धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रित पालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लैणा करे। पट कहिंदे ने ए लैणा जी ए गुरु अंगद देव जी इते राज योग दी परंपरा चला रहे ने। ए अंदरों ब्रह्म नाल जुड़े हुए ने बाहरों जगत नाल जुड़े हुए ने। मूल आप दा संदेश उपदेश परमात्मा दी खातर पदार्थ तो नहीं टुटना और पदार्थां दी खातर परमात्मा तो नहीं टुटना। संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टुटना और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टुटना क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है। संसार प्रभु दा तन है और खुद आप सुभाविक रूप विच एक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बणतर बनाई है सानू तन दिता है सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जांदा है और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने। इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे हथ जोड़ के मत्था टेकया आप तन दे करके धरती विच समा गए जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसोरु मावल कुसम बसंत गणंत नयावे राव सस किरण उदर सागर को

मयाकर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंतु नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसे एक केंद्री ख्याल नूं, किसे एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां दे च अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिगर कीता है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जिहा मैं इस दा जिक्र कर दें। युग बदल देने समय देच, युग बदल देने शरीर देच, युग बदल देने मन देच। युग दी तब्दीली तीन थावां ते आउंदी है। मन दी दुनिया च युग बदल देने हर युग मानसिक अवस्था है। युग बदल देने तन दी दुनिया देच, तन दी अवस्था है युग। ते युग बदल देने समय देच, वक्त देच, और निर्धारित समय देच युग दी तब्दीली हो जाती है, युग दा पलटा हो जाता है। पहली गल। दूसरी, युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, पशु पक्षियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, सूरज चंतारियां दी दुनिया च नहीं। सिर्फ युग दी तब्दीली मनुखी जीवन विच असी देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कायनात विच उही चलता रहिंदा है। लखां करोड़ां साल पहले जिहड़ा सूरज सी अज भी होई है, लखां करोड़ां साल पहले जिहड़े तारे सन अज भी होई है, ये धरती भी होई है, ये सागर भी होई है। प्राचीन तो प्राचीन ग्रंथां विच भी गंगा दा जिक्र है, जिहड़ी हजारां लखां साल पहले सी अज भी होई है। इसनों धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग विच इस तरह बयान भी करते ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है साधर तीसा पवन जुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही सूरज है, ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही धरती है, ओही वगदी होई पवन है। ना पवन बदली है, ना सूरज बदले है, ना चंद्रमा बदले है, ना ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे बदले ने, ना जमीन बदली है। फिर युग दी तब्दीली किसते खड़ी है, किसते खड़ी है? युग दी तब्दीली सिर्फ मनुख ते खड़ी है, बंदे ते खड़ी है। कोई पंछियां दी दुनिया च भी युग नहीं बदलते। हजारां लखां साल पहले जिवें चिड़ियां रहिंदियां सन अज भी उसे तरह रह रही है। हजारां लखां साल पहले भी शेर शिकार करके कच्चा मांस खांदा सी, अज भी उसे तरह। हजारां लखां साल पहले गऊ घास खांदी सी, अज भी घास खांदी। गरज के उनां दी आवाज विच, रहन सहन विच, तर्जे जिंदगी विच कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली तीन थावां ते मंदे ने,
और वह सिर्फ मनुख नाल संबंधित ने। समय दे तल ते युग दा बदलना, मन दे तल दे उते युग दा बदलना, ते तन दे तल दे उते युग दा बदलना। समय दे तल दे उते जेड़ा युग बदलदा है उसकी व्याख्या आसा दीवार दे च धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल कर दिती है। जद जीवन दा लक्ष्य बदल जांदा है तो मनुखी दुनिया दे च युग बदल जांदा है। जद जीवन दा मनोरथ बदल जांदा है तो युग बदल जांदा है। समय दे च मन दे तल ते युग बदलदा है। इत्थे आप इतने गुरमुख बैठे हो तो मैं कह सकदा कोई सतयुगी होवेगा, कोई त्रेते युग दे च बैठा होवेगा, कोई द्वापर दे च बैठा होवेगा, गुस्ताखी माफ, कोई कलयुगी जीव होवेगा। असे सारे मनुखां नूं कलयुगी नहीं कह सकते ते सारियां नूं सतयुगी भी नहीं कह सकते। मनुख सतयुगी हो सकता है, त्रेते युग दे च जी सकता है, द्वापर दे च जी सकता है, कलयुग दे जी सकता है। मनुख नूं वेख के कहा जा सकता है कि किहड़े युग दे च जी रहा है। ये भी मैरज करा, ये तब्दीली मन दे तल ते आउंदी है। तन दे तल दी तब्दीली गर्भकाल दी अवस्था सतयुग, बचपना त्रेता, जवानी द्वापर, बुढ़ेपा बिरध अवस्था कलयुग। ये इस तरीके नाल चार अवस्थावां बन दिया ने। गर्भकाल दी अवस्था बच्चे दी, फिर बचपना गर्भ दे च मां दी कुख दे च सी, फिर धरती दी गोद दे च आया बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ेपा। तन मन ते समय दियां हालतां दे च युग दी जिहड़ी तब्दीली है, मैं थोड़ा जिहा जितना खुलासा कर सकिया थोड़े सामने रखा। मन दी तब्दीली, विचारां दी तब्दीली, सोचने दी तब्दीली, चिंतन दी तब्दीली। विचार बदलदे ने, उसे नूं कहिंदे ने मनुख दा संसार बदल जांदा है। बहु गिणती दे च मनुखां दे विचार तब्दील हो जाण तो फिर कह देंदे ने युग बदल गए, युग बदल गए। सतयुग की व्याख्या सतगुर इस तरह करते हैं, सतयुग रत संतोख का धर्म अगे रख दो। मानसिक तल दे उते युगां दी तब्दीली, धर्म अगे रखवा। जद मनुख जिंदगी दा लक्ष्य धर्म नूं रख लैंदा है, धर्म अगे, ते उहदी प्राप्ति दा साधन होंदा है संतोख। सतयुग रत संतोख का धर्म अगे रखवा। संतोख ही धर्म दी प्राप्ति दा वसीला है, और कुछ भी वसीला नहीं। जप है संतोख नहीं, तीर्थां दा रटन है संतोख नहीं, पूजा पाठ है संतोख नहीं, कथा कीर्तन दा करना है सुनना है संतुष्टि नहीं। ते जे संतुष्टि नहीं, यह मनुख अपने जीवन दा लक्ष्य धर्म नहीं बना सकता। जीवन दा लक्ष्य जद सत होवे, भाव परमात्मा होवे, धर्म होवे, तो फिर प्राप्ति दा साधन संतोख होंदा है। सतयुग रत संतोख का धर्म अगे रथवा। मानसिक तल ते युग इंज बदलते ने, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा। जद कोई मनुख जिंदगी दा लक्ष्य प्रभता ताकत समर्था, ताकत चाहिए, मेरी भुजावां दे च बल चाहिए, मेरे दो हथ हजारां हथां नूं जकड़ सकन, मेरी जबान दा एक बोल हजारां मनुखां दे सिर झुका दे रहे,
ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਜਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਤ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ਤਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਤਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਾ

नरक विश्राम बहु जानी भर मामणे चित हरण त्रैलोक गमन जप तप शील बेदारणे अलप सुख अवित चंचल ऊंचे नीचे समावणे तव भय भुमंचित साध संगम ऊट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जे किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जे किधरे हुई भी है दबे हुए अल्फाजां च खुले शब्दां दे च नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होंदा है और बार भी वो कृत है, धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जांदी है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसे ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जांदा है। ये ते इस वक्त क्रोध दे जी रहे है। अहंकार बोलां दे राही तरह तरह दी कृत दे राही प्रगट हो जांदा है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरति है, एक अंदर दा उछाल है। शायद ये कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होंदा है, लेकिन काम पर्दे विच होंदा है, छुप के आंदा है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जांदा है, हर एक तो छुपाया जांदा है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषां ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ ते, अहंकार ते, मोह ते, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देंदा है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नूं दिनदिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात लई चुने है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी दिच, बहुत पढ़दियां दिच, बहुत छुप छुप।

राजनीतिक दुनिया चाहे सामाजिक दुनिया चाहे धार्मिक दुनिया हर विषय ते विचार होइए यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन कुछ ऋषियां ने जैसे के वात्सायन कोका पंडित इत्यादिक ने काम सूत्र लिखे तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने थोड़े ने। और हैरानगी दी गल ए है कि इन्हों महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखे है काम कृत नु किवें प्रगट करना है इस कृत दा किवें प्रयोग करना है यही लिखे है। अगर कोई महापुरुष ए लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिए है इन्हों किवें प्रगट करना है तो एक गल स्पष्ट हो गई ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनी दा है ते किवें हंकार नु प्रदर्शित करी दा है और हंकार प्रगट करन दे ढंग दसे उकसाण दे ढंग दसे तो ए विचार ए लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध विच कोई लिखे कि लोभी किवें बनी दा है और लोभ नु किवें प्रगट करी दा है तो ओ स्पष्ट होवेगी गल कि कोई लोभी लिख रहा है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने काम सूरत सूत्र जो लिखे है काम उभारण लई काम प्रदर्शित करन लई कामी किवें बनीदा है और काम नु किवें प्रदर्शित करीदा है ए लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी विच वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए और अत्यंत वासना विच ग्रसे हुए मनुखां ने अपनी वासना नु होर उजागर करन लई उन्हां नु पढ़ना पढ़ाना शुरू कीता। यही कारण है कि धर्म दी दुनिया च और समाज दी दुनिया च ये ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नु गुरु नानक देव जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है अपने विचारां विच थां दित्ती है और इसका जिक्र भी कीता है। ये तो ठीक है कि जन्म की क्रिया काम आश्रित है तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए काम रहे ही ना तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दित्ती है तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है तलांजली विच ले जाता है। और यही बार बार दे जन्म ते मरण का कारण बनता है। शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना विच पाण दा कारण बनता है जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मां तक।

और इस दौड़ देच, इस काम ही युग देच हम कैयत, कल युग के काम ही जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नान का जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है, कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है, कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे, भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे, पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप देच पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप देच ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजो की औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी, जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकल दी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी का लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा। अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

तान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत्य नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नू जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनों भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नो नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है। एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जदे मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये तो ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरिया है किवें मरिया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है। मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दूध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनू दूध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟਨਾ, ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ,

कालम पट संग सिर मोरे अनेक लहरी कलोलते धावंत जिया बहु परकारन अनेक भांत बहु डोलते नच मित रंग

0: परम्। अकरणं करोत् अखादिं खादिं असाजं साज समज्जया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञप्त नानक हर नर हरे।
1: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी दित्ती हुई तरतीब विच प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध ते फिर ए लोभ मनुख दियां बुनियादी कमजोरियां विचों एक परबल कमजोरी। लोभ दी उत्पत्ति होंदी है लैण दी भावना तो। हर वक्त लैण दी भावना अंदर चले, लैणा है लैणा है लैणा है। मैं माता कोलो लैणा है, पिता कोलो लैणा है, भरावां कोल लैणा है, पत्नी कोलो लैणा है, बच्चियां कोलो लैणा है, पड़ोसी कोलो लैणा है, संसार कोलो लैणा है, निरंकार को लैणा है, धन लैणा है, सुख लैणा है, संपदा लैणी है, जस लैणा है, प्रभुता लैणी है, मान लैणा है, सम्मान लैणा है। हर वक्त ए लैण दी बुक, ए लैण दी तरफ और ए लैण दी अठे पैर बनी हुई बिरती, बस यही लोभ है। एक ऐसी गंड नू जन्म देंदी है, इसे दा नाम है लोभ। उम्र दे नाल नाल ए लोभ वद्दा है, लैण दी बिरती वद्दी है, बड़ी प्रबल वद्दी है। और मनुख प्रबल लोभी हो जाता है। लोभ मनुख नु पाप ते मजबूर करता है। जब लैण दी बिरती ले नहीं सकती तो अतृप्त लैण दी बिरती ए लोभ खून भी सोचता है, चुराण भी सोचता है। ये सोच पाप है, पर जब ए लैण दी बिरती बहुत प्रबल हो जाए, ये सोचनी शिखर ते पहुंच जाए, पाप प्रबल हो जाए, तो जद ये किधरे खो लैंदा है, चुरा लैंदा है, बेईमानी कर लैंदा है, तो ये अपराध बन जाता है। बहुत वड्डी संभावना है लोभी दे अपराधी होने की। और हमेशा लोभियां तो ही एक दूजे दे धन नो संपदा नो खतरा है। अगर लोभ व्यापक होवे हर एक दे हृदय च और बड़ा प्रबल, तो हर एक दा धन हर एक दी संपदा खतरे दी समझा, किधरे चुरा ली जाएगी, किधरे खो ली जाएगी, किधरे लुट ली जाएगी। लैण दी बिरती लोभ, लोभ दे च खोना लुटेरा, लैण दी बिरती लोभ, लोभ लुटेरा, लोभी लुटेरा हो ही जाएगा। और ये लाजमी सही ढंग नाल, गुप्त ढंग नाल, प्रगट ढंग नाल खून भी सोचेगा और ये पापी हो जाएगा। देन दी बिरती मैं देना है, किसे नु सुख देना है, किसे नु धन देना है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਨੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਅਮਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਣ? ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਕੌਣ? ਪੁਨੀਤ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ? ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਕੌਣ? ਪਾਪੀ। ਪਾਪ ਲੋਭ, ਪਾਪ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਠਠਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,

0: है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। बादशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नूं बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नूं मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।
1: ज्यों कूकर हरकाया,

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

0: हमाता भरे जामुरदार न खाए। भराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सूअर खा रहा है मुर्दा सूअर, मरिया होया सूअर। पराया हक इते सूअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनाहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसी वक्त कहा कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखिया बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खांदा है, भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ का मन ते मनुख का मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख की आखिरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी की आखिरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकौले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन दे, देशवासियों दे चिंतन दे, क्योंकि मनुख की तरह सोचती है, मनुख की तरह ममता रखती है, मनुख की तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनु मारना ऐसा है जैसे मनुख नु मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सूअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सूअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सूअर, अगर वो मुसलमान है, खा रहा वो सूअर अगर वो बेगाना हक खा रहा है, अगर भारत का वासी है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, पराया हक खा रहे है, गऊ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुर्दां, भलके भौंके सदा बेहाल। आसा तृष्णा भौंक दियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निडाल करके रख देंदा है। एक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरधार ताणक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है मेरा है, झूठ बोलता है जब उसका नहीं है। इस जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजियां का खुंदा है, दूजियां की चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है। बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते तृष्णा ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने लोभी दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी हुंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन नू संपदा नू जमीन जायदाद नू। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोग प्रधान हो गया है, हलकत लोभी हो गई है, तो एक दूजे तो खतरे वध गए ने, छीना झपटियां वध गई ने। लोभ प्रधान धन। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते बड़ा सुंदर आसा दीवार देच भी फरमान कीता है, जैसे राजनैतिक दुनिया विच क्रांतियां आउंदियां ने, राज पाठ ते बदल दें, नीतियां बदल दियां ने, विधान बदल देने, कई दफा करंसी बदल दी है, धन दा प्रचलन बदलदा है, रूप रंग बदलदा है। बाहर दा ए पलटा राज पलटे नाल होंदा है, लेकिन मनुख ते अंतिशकरण दी दुनिया है, मन दी दुनिया, उस दे उते अगर अहंकार राज करे तो नीति देच व्यवहार देच जुलम बर्बा हो जाता है। अहंकार दा मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं अहंकारी किसी नू भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नू पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आण नू राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती देच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने, जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दना, लिताड़ियां गईयां गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती विच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरे आम हो जाता है। किसी मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसी मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसे वक्त भारत देश काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे थे पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक मंदिरां विच दुराचार, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੋਨਾਰਕ ਖਜੁਰਾਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਬਕੌਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਭ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮੈਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਲੱਭ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ? ਝੂਠ, ਕੂੜ। ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਲ, ਔਰ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਾ ਦੋ ਦੋ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਝੂਠ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੂਠ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ।
1: ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ,
0: ਜਦ ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,
1: ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ,
0: ਇਸ ਨਾਇਬ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ,
0: ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਾਮ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ज्ञान विहूणी भाए भरे मुर्दार।
0: अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहे है और लो मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, अकरण करोत अखादन खादन असाजन साज समझ्या। लोभी ओ कुछ करता है जो नहीं करना चाहिदा, ओ खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

अजित सूर संग्रामं अत बलनाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथाह सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है, ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिणने औखे ही ने। जेता समंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। उंज ते अनंत अवगुण ने, अनंत अवगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल अवगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित देश लिया जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणा दे जमतना है। सतगुर मोह तो आरंभ कर देने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नू कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है, लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पिया है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है, लेकिन बहुत बड़ियां किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटण का दुख है, इसी टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना होई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करदा है उतना ही मोह वध जांदा है, और जितना मोह वध जांदा है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह वध जांदा है, उतनी ही पकड़ वध जांदी है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है। जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है, बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते ने। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का

सहजे सहजे विछोड़े दा दुख धीमा पैंदा गया। क्यों कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मां नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया है, प्यो नु पुत्र मिल गया है, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दिती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आए हो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलाण लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलाण लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ

0: गया, हमेशा दी नींद सौं गया। इस बच्चे नु मुर्दा वेख के ना मां दी अखां चो हंजू, ना पिता दे मुंह चो होके दा संस्कार कराए। कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। क्यों? इस नाल मोह नहीं। मोह क्यों नहीं? मेरा नहीं, मेरे नाल मोह हुंदा है। जो मेरा नहीं उस नाल कादा मोह। लेकिन दास संस्कार करके घर वापस ही आए ने, एक सज्जन ने आके दसिया, मित्रो जिसका दास संस्कार करके आयो वही थोड़ा बच्चा सी, जिसनु लेके आयो ये नहीं है थोड़ा। सबूत मुहैया कर देते। ताहियां मार के रो उठी मां, चीखा निकल गईयां पिता दियां, सारा घर गमां दा सागर बन गया, मरगट घाट बन गया। हुणे जिस घर दे च खुशियां दे फुल खड़े होए सन, हुण दुखां दे कंडियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। हुणे जिथे खुशी दी रोशनी सी, हुण दुखां दे हनेरियां तो इलावा होर कुछ भी नहीं। मां अपने केस पुटदी है, पिता अपना सिर दीवार नाल मारदा है। साडे बगीचे दा फुल मुरझा गया, उते मेरा सी मुरझा गया, उते मेरा सी टूट गया, उते मेरा सी जांदा रहा। तो दुख मेरे दा है, वरना लड़का तिक सामने खड़ा है, ये मेरा नहीं। उस नाल मोह भी टूट गया। इस उदाहरण नाल स्पष्ट हो गया, जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है छोटी जी खराश भी बर्दाश्त नहीं होवेगी। पर जिस विच मोह नहीं, जो मेरा नहीं, रेजा रेजा हो जाए टूट के, तां भी कोई दुख नहीं, तां भी कोई संताप नहीं। संताप मोह दुख ये सारे उत्थे इकट्ठे हो जाते ने जिथे मेरे भी मोर लगती है। मेरा घर, मेरी कुल, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी धन संपदा, तो जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। दरअसल मनुख ने मेरे भी मोर मिथ्या ते लाई है। ए मेरे भी मोर सच ते नहीं ला सकया। वाकई जिसनु कह सकता है ये प्रभु मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, और वो मेरा ऐसा है कि सारी कायनात भी उसनु वाखे मेरा है मेरा है, तामी वो बददा नहीं घटदा नहीं। सब दे हिस्से यकसा आंदा है, इको जी आंदा है। लेकिन मोह एक ऐसा पर्दा, मेरा एक ऐसा अज्ञान, जिस कारण करके ये मिथ्या नो ते गल नाल लांदा है, सच तो कोसों दूर भजदा है। और इस तरह जिंदगी मोह दे दलदल विच फस के रह जाती है, मोह दे खूह विच डुब के रह जाती है। और ए मेरे दा विस्तार सिर्फ मनुखां तक ही नहीं कि मेरा भरा, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अगां चल के ए मोह संपदा ते हो जांदा है, धन ते हो जांदा है। मौजूदा दौर विच कुछ मनुखां ते विश्वास घटदा जा रहा है। मनुख दी मनुख नाल पकड़ घटती जा रही है, मनुख स्याणा हुंदा जा रहा है, चंचल हुंदा जा रहा है, बौद्धिक होंदा जा रहा है और जितना बौद्धिक होंदा जा रहा है मनुख दी पकड़ मोहनुक नाल घट के मनुख दी पकड़ धन संपदा नाल ज्यादा हो गई। पुत्र धोखा दे सकता है, भरा मुंह फेर सकता है, लेकिन धन धोखा नहीं दे सकता, मुंह नहीं फेर सकता। जैसे इसनों वरतांगे वरत सकते हैं, पर जैसे पुत्र नू वरतना चाहिए नहीं वरत सकते। जैसे पति नू आखी है या पत्नी नू कुछ कही है, लाजमी नहीं कि दोवें एक दूसरे की मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है। तो इस सदी विच मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया है, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया है, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं पदार्थ की खातर, धन की खातर, संपदा की खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, मां बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मुंह मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति दे विचकार दियां तलखियां पैदा हो सकदियां, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकदियां, और जद भी इन्हां रिश्तियां दे दराड़ देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती दे कारण धन होवेगा। धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते हैं धन दी पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन दी पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां दी पूजा नहीं करता, पिता दी पूजा नहीं करता, पुत्रां दी पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन देश धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो गई, और मूल कारण धन जैसा वर्ती है धन ना नहीं करता, धन जिथे रखी है, और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी देखते ये पगड़ शिखर ताते है, बड़ी प्रबल है, इस तो थले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़, और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जोबन की पकड़। मोह का एक बहुत वड्डा विस्तार है, और ऐसा जापदा है जैसे मोह नू नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नू भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तू बहुत बलवान है, हे मोह तो बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारियां ते पाई हुई है, तू सारियां नू अपनी जाल दे फसा के रखिया है। मोह नू घूमण घेड़ी भी कहिंदे ने, सियाणे लोग जानदे ने, खास करके दरियावां दे कंडे ते रहण वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनू भरन लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नू पानी भरन लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जांदा है, वो घूमण लग पैंदा है, उसे नू कहिंदे ने घूमण घेरी। सियाणे तैराक भी जाणदे ने, अगर कोई उस घूमण घेरी च फस गया है निकल नहीं सकता। हां उदों निकलदा है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जीव का मनुख जितना संघर्ष करता है निकलण का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतने ही डुबदा है, उतने ही गोते खांदा है,
1: और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब सारे निकल जाते हैं प्राण तो यह भी घूमण के रीचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़प के रह जाता है। और निकलना जीवदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दिया मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही कैसा चक्कर है, यही कैसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, गैनी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। मोह का घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले यह घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणों के निकलन तो पहले मोह के घेरे विचों निकल जाते हैं। बड़े सूरबीर ने मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लेंदा है, मोह नू जित लेंदा है, प्रभु उसनों गलवकड़ी चलांदा है, और वो जीवन दी बाजी वाकई जित लेंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लेंदा है।

0: अत बलना बहुमर्दने।
1: हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं।
0: गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने।
1: बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक
0: देवते मानुख
1: चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख
0: गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने।
1: फिर ऐ मोह तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समो ब्रह्मण्ड ऐ मोह तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नू भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाने कहंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नू छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं, जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋਪ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसे नु भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहने लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे। वो किस तरह हो सकता है? खुश होके, प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइयां। आखे, खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया, कोई बच्चा ले आई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां, जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे च लिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहा है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभुदि शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी दे सारे दा सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरश होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे असी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह ऐतिहासिक वार्ता है एक ऋषि ने जब यह नाम सुनिया राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मौत उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी एड एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वसों के संजोग वसों के इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, डंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर। राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ाती है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

स्थले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोले। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो,

असीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरा है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये प्रभु की लीला समुची सरां आवागमन बने होया है और इतने सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखां नू नहीं कहंदे किधरे, इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहता है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन।

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है,

स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखा के सामने शहादत का जाम पींद आया दोवें लखते जिगरां नूं देखते ने शुक्र करते ने परमात्मा का ईश्वर का अकाल पुरख का असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो ना तहत दा मो ना परिवार दा मो ना संसार दा मो केवल प्रेम अकाल पुरख दा प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो मोह सीमत है प्रेम असीम है संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है निरंकार असीम है प्रेमी असीम है जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है। इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं, मैं, मैं। पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिलत है। तू ही है, तू ही है, तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी, जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार, अज राह चुनार, कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे, तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया है सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साद संग जांका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है।
एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

तपते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसदे दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने,

लिए आंदरा रह गईयां, सुट दितियां गईयां, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईयां, कम देच वर्तियां, केवल आंदरा बच गईयां। ये नदाफ चुक के ले गया जो रुई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जड़ी तंद लाई जांदी है वो बकरे दी आंत होंदी है, अंदर होंदी है। ले गया नदाफ उसे धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गई सब।

यकदम बखे शरान बुर्दम के कीस्तम ऐवाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। एकदम जो नकद से इनू मैं खर्च कीता, गुजरे है दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आन वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड, एक चित्त जै एक छिन ध्यायो काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए, हाजर हजूर खुदा है। इसे नु महान सूफी संत बाबा फरीद ने इंज बयान कीता है, आज मिलावा शेख फरीद ताकम गूंजणियां मनो मचिंदणियां, जिस नाल मन मछरदा है जे तू किधरे रोक सके, जे किधरे भूतकाल दियां यादां नु मिटा सके, जे किधरे भविष्य दी चिंतावां नूं तू जला सकें, हुणे ही खुदा ते प्रगट, प्रभु ते प्रगट। पर वर्तमान विच पहुंचण लई ते बड़ी साधना, बड़ी तपस्या। वर्तमान विच ही भगवान प्रगट हुंदा है, वर्तमान विच ही प्रभु दी झलक मिलदी है। शायद इसे वास्ते महान दार्शनिक और गुरमत दे महान ज्ञाता तत्वेता ब्रह्मज्ञानी भाई साहब भाई गुरदास जी, उन्हां दा फरमान, वर्तमान विच वर्तदा होवनहार सोई परवाना। गुरमुख ते वर्तमान विच जीवदा है एक क्षण विच, और उस विच जो कुछ हो जाए हो गया है, कबूल परवान, और जो हो गया कबूल है परवान है, समझ लो ये जो हो गया उस तो उच्चा उठ गया, इति संसार तो उच्चा उठ गया। क्योंकि संसार विच दुख है सुख है, हासे ने रोने ने, जन्म है मरण है, नफा है नुकसान है। संसार विच इज्जत है बेइज्जती है, तंदुरुस्ती है बीमारियां ने, स्वप्न है क्रूरता है। उच्चा उठ गया एकदम विच, जद टिकया तो एक प्रगट होया, दो मिट गया, दो मिट गए संसार मिट गया, एक प्रगट हो गया निरंकार प्रगट हो गया। तो एक ते एक दम दे ची प्रगट हो गएगा, बहुते दम जो खर्च हो गए ने उन्हां दी याद दे च परमात्मा कित्थे, उन्हां दमां दी याद दे च ते कुछ दुख होणगे कुछ सुख होणगे। बैठा हुंदा है मनुख यादां विच, कदी दुख दियां यादां कदी सुख दियां यादां, कदी मिलाप दियां यादां कदी विछोड़े दियां यादां, कदी संताप दियां यादां कदी मिलाप दियां यादां। इस विच जी रहा हुंदा है, या फिर भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा हुंदा है, ये मिलना भी है कि नहीं, कामयाब भी होवांगा कि नहीं,

0: नफा होवेगा कि नहीं, भविष्य की चिंता इस तरह दुबदा दे डुबोई रखती है। भविष्य की चिंता दे मनुख दुफाड़ होया बनिया रहता है, एक दम दे भविष्य मिट जाता है, एक दम दे ते भूतकाल मिट जाता है, एक दम दे ते एक प्रगट हो जाता है, वो एक आनंद स्वरूप, वो एक आनंदमयी। इस वास्ते गुरबाणी ने भविष्य नू जाल कह दिता है, भूतकाल नू जाल कह दिता है, और भूतकाल ते भविष्य एक गुजरे हुए दिन, आन वाले दिन, और दिन दिन करके दिन भूतकाल बनते जा रहे ने, दिन भविष्य दिया चिंतावां दा रूप धारण करते जा रहे ने, तो समय नो नापण दा ढंग दिन ते रात इति जाल बन के मनुख नो फसा रहे ने। जाली रहण जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाई तेती, रस रस चोग चुगे नित फासे, छूट समूड़े कवन गुणे, दस्ते सही क्यों छुटेगा इस जाल तो। तो सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके, सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे चे, सच ते एक सैकंड दे चे, और ओही एक सैकंड, ओही एक क्षण, ओही एक दम सच है। लंग गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे बैठे, ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा, उम्मीद रखदा, भरोसा रखदा। सतगुर की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया, समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला, अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं, तो कम से कम 200-300 दमां दा ते मरदाने नू भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस, तो बाला कहिंदे पातशाह मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं ते इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे ते नहीं, तो 3-4 दमां दा भरोसा। समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया, 3-4 दम। दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नूं, पातशाह तुहानूं किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी, मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मोह दे चे बस इसे ते यकीन है, इन्ना क भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। जिथे सुरत एकदम दिश डिग गई उथे एक प्रगट हो गया। जिथे मन एकदम दिश डिग गया मन मिट गया विचार खो गए उथे एक नो प्रगट होने लई स्थान मिल गया जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे भूत काल दियां यादां असीम आवन सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट आउंदा है और जैसे सच प्रगट आउंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा सब काल दा तमाशा क्या छोटे क्या वड्डे क्या आम साधारण क्या देवी देवते सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा काल पाए सूजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक विष्णु जैसा महान सतोगुणी शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर पर काल विच जी रहे ने समय विच जी रहे ने। अजे समा मिटिया नहीं अजे काल मिटिया नहीं अजे काल मौजूद है काल विच जीविया जा रहे हैं। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्तिमान है पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं माजी दियां यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिलां ते अजे ही मिलां। इसनों में उर्दू रूप भी दिखता है कुछ माजी की खाक हूं कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ते बेहाल है इते वर्तमान विच नहीं इते एकदम विच नहीं इते बेहाल है इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा इते माजी दियां यादां दे जी रहा है ये वर्तमान विच नहीं ये हाल विच नहीं और जो हाल विच नहीं परिशियन च कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत विच ईरान अफगानिस्तान विच पुछिया जांदा है तेरा की हाल है तेरा की हाल है भाव वर्तमान विच है कि नहीं एक प्रभु विच है कि नहीं कि दो विच जी रहे हैं। सपना है जिन्ने देर तक चल रहे है पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन जागृत अवस्था दे मिट गया। है नहीं है नहीं है है स्वप्न है स्वप्न दे मनुख कतल करे शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख करे। स्वप्न विच दुराचार करे शरीर दी ओही हालत बनदी है मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत विच। स्वप्न विच चोट लग जाए जरब लग जाए
1: ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਤ ਔਰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨੋ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸਵਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सुख विच समा छोटा हो जांदा है, छोटा हो जांदा है। बाबा फरीद कह रहे ने, फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन पास, बहुत लंबी हो गई ये रात होके ने, तो होके दुख तो निकल देने, होके विछेड़े तो निकल देने, और दुख दे समा लंबा हो जाता है। सूफी संत बाबा फरीद फरमान कर रहे ने, ए विछोड़े दी रात हे प्रभु हे खुदा बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी। कितनी लंबी हो जाती है, जितना महान दा विछोड़ा होवे उतना ही समा लंबा हो जाता है, जितना तुच्छ चीज दा विछोड़ा होवे दुख छोटा होंदा है, समा भी थोड़ा जिहा लंबा होंदा, ज्यादा नहीं। पर मन महान है, रस है, आनंद है, उसका विछोड़ा हो गया है, समा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कितना के लंबा हो जाएगा, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, चार पहर चौ जोगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे, नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा, लखां साल वर्गा, नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगां वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत में इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतिशे जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नूं दस दियां तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू 4 साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नूं मनिया नहीं, इसे एक गुनाह करके वो मैनू हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरां नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा फिर उस खुदा नूं रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। ते बहुत सख्त है, ते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा, नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद दे काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे, एक क्षण दे, एक दम दे भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहुगिणती मनुखी दुनिया दी काल विच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरती है, ये सिमरती कदी अगे जांदी है कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी कि किस तरह मिटे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है। भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दिसे सब को है, सारी चिंता दिस दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलन गए, उन्होंने भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य की चिंता दे च। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इसनु चेते है। गुजरे होया कल कैसे सी, गुजरे होया साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने। आन वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी दी सिमरति ये शक्ति ज्यादा होंदी है, वो इस जन्म दी दीवार नु तोड़ के अगले जन्मां च भी पहुंच जाती है। पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादा मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहे है, इसे बोझ दे तले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरता है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमे आप दे कन्ना विच होकिया दी आवाज पई। जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए थे नंद लाल, नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है। गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमा ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है। हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है। हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है। हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंद लाल सोच दे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पादशाह मैं शायर हां कवि हां आपदा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर हैं कवि हैं, तो कवि दी अपनी कल्पना दी प्रवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी प्रवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है, چل تو اپنے تخیل دے آدھار تے کلپنا دے آدھار تے دس آسمان دا رنگ کالا کیوں ہے رنگش کبود کر دلے از پر سرار ساخت از بس کے دود آہے من از آسمان گجست اے میرے بادشاہ میرے تڑپے ہردے چوں جڑے ہوکے نکلے نے او جد آسمان تک پہنچے نے انہاں نے ساڑ کے کالا کیتا ہے بادشاہ نے گلوکڑی چ لے لیا اتنے کال دے باہر تھلے تو جی رہے ہیں اکال پرکھ رحمت کرن بخشش کرن کال ختم ہوئے اکال پرگٹ ہو گئے اکال مہا آنند ہے اکال ورتمان ہے کال بھوت کال ہے کال بھوش ہے اور کال بھوش کی چنتا ہے کال بھوت کال دیا یاداں نے پر اکال نہ بھوت کال دیا یاداں نہ بھوش دیا چنتاواں پرم آنند پرگٹ ہو گیا اکال پرگٹ ہو گیا بھگت کبیر کہندے نے دن سرین بید نہیں ساستر تہاں بسے نرنکارا کہت کبیر نر تسے دھیاو باوریا سنسارا اے پاگل سنسیارے ہو واقعی جو بھوت کال دیا یاداں چ بیٹھا ہے انہوں کس طرح سیاح آخیا جا سکتا ہے جو بھوش دیا چنتاواں ڈبیا ہوا ہے اس نے کیویں سیاح آخیا جا سکتا ہے سیاح تے او جو ورتمان جی رہا ہے اکال جی رہا ہے کال نہیں اکال جین والا کال دیا ساریا پھائیاں نو توڑ کے رکھ دیندا ہے کال دے جال نو توڑ کے رکھ دیندا ہے تدی تے ستگراں دی بانی فرمان کر دیئے کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو اسے نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے اکال ہیں اجال ہیں ہی پربو تو اکال ہیں تیرے اتے کال دا جال نہیں ہے اور مٹ جاندا ہے سمادھی دے سما کھو جاندا ہے کال سمسیاواں تے بھوش دیاں نے سمسیاواں تے ماضی دیاں سن تو یاداں سمسیاواں دی یاداں کچھ بھوت کال نال سمبندت ہیں کچھ بھوش نال سمبندت نے مٹ گئیاں ساریاں سمسیاواں کیونکہ ورتمان ایک چھن سمادھی یا منک سمسیا چ جیوندا ہے یا سمادھی سمادھی اکال ہے سمسیا بھوت ہے سمسیا بھوش ہے سمادھی اکال ہے اکال دا چنتن سمادھی لین کر دیندا ہے اکال دی یاد کال نو مٹا کے رکھ دیندی ہے اکال دا چنتن سچ دے مارگ تے چلنا ہے اور سچ تک پہنچنا ہے کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنٹھا ٹھاٹھیو

ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਇਹ ਮਹਾਂਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੁਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ,
पवित्र माहौल। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा हो गए कि पवित्र थां कोई लभे ही ना, ते चारों पासे ही अपवित्रता होवे। ऐसे दौर देच मनुख अपने मन नू किस तरह बचावे। इकबाल ने भी कह देता है, दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाजनी गोयन के दामन तरमकुन होशियार वास। तू लक्कड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्या नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता। उपरों कह रहे हैं डुबना भिजी ना गिला ना हो, तो मैं किस तरह बचावा, अपने आप नू किस तरह बचावा। ये जो माहौल है, ये जो युग है, ये जो बाहर दी हालत है, इसनू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने नाम दिता है कलयुग। ते कलयुग नू गुरु नानक कहंदे ने कलाली। ते कलाली तो मुराद आउंदा है शराब बना के बेचण वाला, जो स्वयं बनांदा है बेचदा है कलाल। पुराना शब्द साडे देश दे शराब बना के वेचण वालियां नू कलाल कहंदा है, कलाल। महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है, ए युग ही कलाल है, ए कलयुग ही कलाल है। अगर ए कलाल है तो फिर ए केड़ी शराब बनांदा है और केड़ी शराब बेचदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो शब्द उच्चारण किया है, इसका सिरलेख इंज है, सलोक मर्दाना महला पहला। महले पहले तो मुराद है गुरु नानक देव जी महाराज का यह वाक है, पहले पातशाह का है। सलोक मर्दाना पर यह शब्द मर्दाने के प्रति उच्चारण किया है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का साथी सी। देखण नूं ते विचारीए सेवक से शिष्य से, पर गुरु नानक भाई साहब करके बुलांदे सन, भाई मर्दाना। भरा दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है, और जो गुरु दा भरा है, गुरु नानक दा भरा है, भाईचारा बन गया गुरु नाल, इत बहुत वड्डी पदवी प्राप्त हो गई। तो सिख जगत देच भाई साहब एक धार्मिक पदवी है, गुरु नाल भाईचारा हो गया। हुण भाईचारा गुरु नानक नाल है, हुण भाईचारा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल है, हुण भाईचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल है। इस भाईचारे नूं बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है, और अज भी असी चोटी दे धार्मिक मनुख नूं भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नूं सतगुरु भाई साहब करके बुलांदे ने। जद भाईचारा है, इतनी नेड़ता है, तो नेड़ता दे कोई राज नहीं आउंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरापण है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुके फिरदा है, और हर मनुख बुरके देच है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नूं मेरी असलियत दा पता और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानियां तों मनुख नूं पर्दा करना पैंदा, पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कोई सामने ओपरा है, बेगाना है। भैन भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करदी, अपना है, ये तो अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाण दी कोशिश कर रहा है, तो इसका छुपाना ही इस गल दा सबूत है, सामने ओपरा है,
सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देंदा है। उदा जी करदा है अपना सीना भी चीर के इदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है किधरे इस दियां नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पए दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनन दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहते हैं छुपाना चाहते हैं इतनी गलती स्पष्ट है ठीक नहीं होवेगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्टा नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नग्नता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नगन है, नगन है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेजपणा नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कई ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो यह दौर, यह समा, इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते कलाल, और यह शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग की नगनता सतगुर पेश कर रहे ने, हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढकया है, बड़ा ढकया है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघया है कि असी धार्मिक पुरुषां दीआं मूर्तियां भी नगन बनाईआं, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईआं, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिसनूं इह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया। कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनियां होईयां ने, हकीकत यह है। हमा तन दाग दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। यह सूफी संत कहिंदा है रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पटियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह अहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहंदे ने मैं ते विस्माद हो जाना, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इना दी नगनता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करती, इना दी नगनता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करती, इना दी नगनता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करती। मनुखता दे आदकाल दे
मनुख जद निर्दोष सी इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने कपड़िया दी लोड़ नहीं सी। दोष वद्दे गए कपड़े वद्दे गए सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है निर्दोष है हुन नंगा दोषी कहलाण लग पे। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह दिंदे आ बड़ा नंगा मनुख है, ये ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया ये ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है ढकिया होया है। परिभाषा बदल गई, ये ते बहुत नंगा है, ये ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा समय दा प्रभाव। तो ये शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने दे प्रति उच्चारण किया है। कल कल वाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है। अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारियां चीजां खाण वालियां। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इन्हां दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाणा है कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाण दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेड़ी मैं बनाण दा ढंग तैनू दसदा ओ पी। बन शराबी बन कबाबी, ऐसा शराबी ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तैनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नू मैं खाना कहा जांदा, अज ते खेड ही कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इसदे कुल शराब केड़ी है? कल कल वाली काम मद, इसदे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे? एक दौर ऐसा भी लंघिया, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बाहरों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी, गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुईयां ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने। और घर दे च भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर दे च बार बन गई, घर विच बोतलां आ गईयां, घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घर धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने,
दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां दे, इश्तहारां दे, तरह तरह दे मैगजीन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिन सियात नाल भरियां हुई कहानियां

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬੇਸੁਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਮਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੇ ਕਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਸਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨੇ ਐਸੇ ਜੋ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਚ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਬੜਾ ਤੀਬਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਮਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਤੇ ਕਲਾਲ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਿਖਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਇਸ ਕਲਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਹਿਖਾਨਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਮਦ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ, ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਸਾਕੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ। ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਨ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
और बेहोशी विच ही जन्म दी क्रिया चलती है। बेहोशी हावी है, जब काम विच होश हो गया है तो फिर मरण विच भी होश होवेगा, और जिसका मरण विच होश हो गया है ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया का वासी हो जाता है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नूं थोड़ा बेहोश करता है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नूं हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दीआं अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगीआं, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, क्रोध कटोरी, क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मोह भरी, मुंह दे क्रोध भरया है, मुंह कटोरा बनया होया है, एदे च की है, काम दी शराब और क्रोध कटोरा बनया है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट आंदा है, भावें क्रोध अखां च भी प्रगट आंदा है, भावें क्रोध हत्थां च भी प्रगट आंदा है, भावें क्रोध चेहरे ते भी प्रगट आंदा है, पर क्रोध दी अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट आंदी है। और जब जबान चो क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त आउंदी है। कहिंदे ने जबान दी सख्ती परमात्मा नूं पसंद नहीं, खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए न हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिदी जबान दे। और जो जबान दे सख्ती ले आया है, समझ लो जबान दे हड्डी आ गई है, इदे हलक दे हड्डी आ गई है, इसकी जबान सख्त हो गई है। घरेलू बहुते कलेश जबान दी सख्ती तो पैदा होते हैं। बहुत सारे संघर्ष ते लड़ाइयां दा कारण मनुख दी अखां नहीं ने, मनुख दे कन नहीं ने, मनुख दी नासका नहीं है, मनुख दे हाथ पैर भी नहीं, मनुख दी जबान है। अगर कल कलेश दा मूल केंद्र लबांगे किस कारण करके होया है तो इस जबान ही मिलेगी। क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार, पिलावा कौन है, साकी कौन है, अहंकार पेश करने वाला, अहंकार मैं हां। जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना क्रोधी होवेगा, जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना ही कामी होवेगा। ताई ये दोवां दा कट्ठा जिक्र कीता मेरे पातशाह दी बाणी ने, काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा डाले। जिवें सोने नूं सोहागा ढाल के रख देंदा है, काम ते क्रोध मनुख दी काया नूं गाल के रख, काया दे बहुत सारे क्रोध, काया दे बहुत सारे रोगां दा मूल कारण असीम क्रोध असीम काम। अगर काम सीमा दे चाहे ते क्रोध खत्म हो गया है, इस मनुख दी काया कंचन वर्गी हो सकती है, कंचन वर्गी काया। जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही। सोना की सोना होवेगा, काया ही सोना है, काया ही कंचन है, पर काया नू कंचन बनाना किसे किसे नू आंदा है, काया नू लोहा बना के और जंगाल ला देना इस सब नू आंदा है। और गुरु नानक ने इसका बड़ा जिक्र किया, कल कल वाली काम मद मनवा पीवण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। मजलिस भी चाहिए, शराब कली किवें पी है, कोई महफिल कोई साथी, यही कारण है शराबी साथी लभ देना है, साथ लभ देना है। ते मजलिस वास्तविक केड़ी है, महाराज कहते हैं मजलिस कूड़े लभ दी पी पी होए खुआर, झूठे लोभ दी महफिल। झूठ क्यों कह देता, लोभी झूठा ही होता है,
झूठ क्यों कह देता, जीवन सीमा दिच है, लोभ असीम है। कितना जीवेगा, 100 साल, चलो 150 साल तक जी रहेगा। जीवन दी सीमा है, मनुख दे लोभ दी सीमा नहीं है। अज तक किसी भी पैमाने नाल मनुख दा लोभ नापिया नहीं गया। ये गल वखरी है, हिमालिया दी बुलंदी नाप ली गई है, प्रशांत महासागर दी गहराई नाप ली गई है, सूरज चंद तारियां दी बुलंदी नाप ली गई है। ये लोभ किथे खत्म होंदा है, सीमा अजे भी पकड़ च नहीं आई। किथे खत्म होवेगा, किथे गल मुकेगी। इति सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। कहिंदे ने एक राजे ने एक भिक्षु नो, बौद्ध भिक्षु नो बेनती की थी, बड़ा आनंद दिखाई देंदा है थोड़े कोल, बड़ा सरूर, बड़ा रस, साड़ी झोली च भी पाओ। ये भिक्षु कहन लगा, अच्छा मैं कल जब थोड़े द्वार ते भिक्षा मंगण आवांगा तो कुछ भिक्षा मैं थोड़ी झोली च भी पा देंगा। तुसी पदार्थ मेरे पात्र दे पाना, परमात्मा दी कुछ गल्ला मैं थोड़े पात्र दे पाण दी कोशिश करांगा। और अक्सर संत ते संसारी पदार्थ ते परमात्मा दा वट्टा सट्टा करदे ही रहे ने। ओ पदार्थ चोली च पा देंदे रहे ने, ओ परमात्मा दी गल सुना देंदा रहे। आदकाल तो ऐसा चलदा रहे। राजा खुश होया और कहन लगा, ए भिक्षु फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े आवांगे। अक्सर बौद्ध भिक्षुआं नूं भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने। जिथे जिथे बौद्ध धर्म है, ये दृश्य बहुत देखण नूं मिलदे ने। राजा भिक्षा लेके पके हुए पकवान तरह तरह दे बार लेके खड़ा है। भिक्षु पात्र ले आया और आखिया, राजन पाओ। वो खीर पाई, राजे ने थल्ले डुल गई। भिक्षु ने कहा, होर पदार्थ पाओ। राजे ने सोचा शायद कोई करामाती गल होवे, पात्र आपे ठीक हो जाए। तो फिर हलवा पाया, पूड़ियां पाईयां, थल्ले डिग गईयां। होर पदार्थ पाओ, तरह तरह दे बने हुए होर पकवान उस पात्र दे पाए, पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिर दे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ऐ भिक्षु तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टुटिया होया, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैथों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैथों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लब दी पी पी होए खुआर, इस शराब नू पी पी के दुनिया खुआर हो रही है और अपना जीवन अजाई गवा रही है। लेकिन शराब नाल कबाब जुड़े हुए है, और अक्सर जब शराब दी गल चले शराबो कबाब, कबाब दी गल चले शराबो कबाब, कबाबो शराब, शराब कबाब खांदे हो। हालांकि एक पीण वाला है, एक खान वाला है, पर शराब नाल कबाब जुड़ गया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कबाब खाने ने,
ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰ। ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਵੇਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਰਜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਬਸਾਰ, ਛੁਰਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਚ ਐਸਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਨੋਕਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਇਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਭੇਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਚੁੱਭੇਗਾ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਛੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਛੁਰਾ ਇਹ ਚੁੱਭੇ ਦੋ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਗਾੜ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੋਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈ ਗਾੜਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲੱਭ ਨਿਖੱਥਾ ਵੇਖ। ਅਗਰ ਇਸ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਠਾ ਕਰੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੁੱਠਾ ਝਟਕਾ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਝਟਕਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰੇਤ ਕੇ ਗਰਦਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਣਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੋਵੇਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੋਂ ਸਖਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਸਖਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲੱਭ ਨਿਖੱਥਾ ਵੇਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਐਸਾ ਛੁਰਾ ਹੈ ਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਛੁਰੇ ਨੇ ਕੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ? ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਾਮ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਲੋਭ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਛੁਰਾ ਫੇਰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਤੇ, ਨਿਕਲਦਾ ਖੂਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਂਦਰਾ ਓਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
मन पावन हो गए। सच की काथी सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार, तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखता वेख। ए शेख जी, इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया, मांस खा लवे। परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी दे नाल बोल जुड़े ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी शराब पी तो नाम शराब है। हां, नाम एक ऐसी शराब है और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गए, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार देच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फूल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने। स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इन्हां बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी होगी। ए नाम मात्र कहलाण वाले क्लब ए थिएटर और इस तरह दी आयाश दी दुनिया वैश्याले, सब असमत फिरोशी दे अड्डे। बिकदी है असमत स्त्री दी बाजार दे, हुण दुराचार बिकदा है बाजार दे, वस्तुआं नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, इस शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, पहु भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा, मऊआ एक फुल, ते भय दी भट्ठी। मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है कानून दा भय, समाज दा भय, भी समाज दियां नजरां नहीं ने ते हुण मैं गुनाह करा, कानून दी पहुंच नहीं है ते हुण मैं पाप करा। है ते पापी, पर पाप उत्थे करेगा जिथे तक कानून दी निगाह नहीं पहुंच सकदी। है ते गुनाहगार, पर गुनाह उत्थे करेगा जिथे समाज दियां नजरां नहीं पहुंच सकदियां। लेकिन रब दा भय अगर ए मनदा है तो गुनाह होवेगा ही नहीं, पाप होवेगा ही नहीं। रब्बी भय ने पवित्र करके रख देना है, शुद्ध करके रख देना है। ए भय दी तू भट्ठी बना, एदे च पा ज्ञान दा गुड़, एदे च पा ध्यान दा मऊआ। अग केड़ी इस भट्ठी दे तले बालनी है, दो पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोय किए जलेता, छूट गई संसारी। दो पुर जोर, सुरत ते शब्द नु जोड़, ये दो पुड़ा नु जोड़ के बना चुल्ला, दो पुड़ा नु जोड़ के चुल्ला बनदा है। सुरत दे शब्द नु कठा करे बना चुला, इस देते रख भय दी भट्ठी, पा ज्ञान दा गुड़ ध्यान दा मऊआ। थले बालन केड़ा डाणा है, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। काम दा ईंधन क्रोध दा ईंधन ए थले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा,
ध्यान दा महुआ पांदा जाएगा और जैसे जैसे ते तू सिर ते शब्द नो एक करदा जाएगा काम सड़दा जाएगा क्रोध सड़दा जाएगा आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है जलेगा, क्रोध ईंधन है जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए, ईंधन करके जिंदगी चल दिए अग करके, ये अग खत्म होवेगी। क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे, ईंधन उदो बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जलेता, छूट गई संसारी, सड़ गया क्रोध सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा महुआ सी, वो ऐसा पकया उदे चो निकली शराब नाम दी, उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, इस शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, वो चकना कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है और बाकी शराब पीण नु जी नहीं करदा, राम दा रस आउंदे ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदे ही क्रोध खत्म हो जांदा है, राम दा रस आउंदिया रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है, जीवन अमृतमयी हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमयी हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमयी हो जांदे ने, दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, जहरीले बोल दसते ने जीवन जहर है। ये फिक्की दृष्टि दसती है, ये जहरीली निगाहां दसतियां ने जिंदगी जहर है। जहर नु अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है, पर जे अमृत नु जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है, मूढ़ है, नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह देता, जो जहर हला हल है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनु पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है, ते जे तेनु पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है, जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनु पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनु कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है, पर एक कलाल तरका के उसनु शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नु कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नु मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नु जहर बनाया जा सकदा है, जहर नु अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नु अमृत बना लिया संत, और जिने अमृत नु जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह दी जिंदगी मिलती है जगत दे, जहरमई अमृतमई। पर अमृत बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा विरले ने जिन्होंने संखिए दा कुश्ता बनाया हुए, बहुते ने जिन्होंने अंगूर दी शराब बना ली, संतरे दी शराब बना ली, मिठे गन्ने दे रस दी शराब बना ली। थोड़े ने जिन्होंने जिंदगी नूं मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्होंने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नूं गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ए पुरख तू सतसंग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर,
ताकि युग्म प्रभाव तो तू बच सके, इस कलाली तो तेरी जान छुट सके, और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान, व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाएं सतगुरु ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। एक ही जहर तो पी रही है, अमृत भी, अमृत भी, अमृत भी, नाम रस अमृत है। और इसकी खूबी है, इनू पींदे ही सारी जहर शरीर चो निकल दी है, सारे फिके रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।

सब गर्क ने, सब डूबे हुए ने। मैं तो ऐसा देखदा, ये भी मैं अर्ज कर दिया नुकता, कोई पानी दा सुभाव नहीं है मनुख नूं डोबना, नहीं डोबदा, पानी दा सुभाव ही नहीं है डोबना। अगर पानी दा सुभाव डोबना होंदा तो फिर कुत्ते डुबने चाहिए सन, मज्जां डुबनिया चाहिए सन, गवां डुबनिया चाहिए सन, शेर डुबने चाहिए सन, बिल्लियां भी तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे, गवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां। हैरानगी, शेर भी तैरदे ने। केरला विच देख के मैं दंग रह गया, 60 फुट गहरे पानी विच हाथी इशनान पिया करदा, गहरा अंदर चला गया, फिर उपर आ गया, तैरदा पे। मैनू इंज लगे जिवें पहाड़ पानी विच तैरदा, इन्ना वड्डा भारी बरकम जिसम। काफी चिर होया इस दृश्य नूं देखिया, मैनू ये ख्याल मैनू उत्थों मिलिया, कहा पानी दा सुभाव डोबना नहीं है, नहीं तो हाथी डुबना चाहिदा सी, इन्ना गहरा पानी है झील दा, इहदे तैर रहे गवां तैरदियां ने, घोड़े तैरदे ने, मज्जां तैरदियां ने, बिल्लियां तैरदियां ने, कुत्ते तैरदे ने। बदकिस्मती है मनुख डुबदे ने, मनुख डुबदा। ते हुण पाणी कोल पुछ लईए, ओ बिल्लियां नाल तेरी दोस्ती है, कुत्तियां नाल तेरी दोस्ती है, मनुखां नाल तेरी दुश्मनी है? कुत्ते ते तैरदे ने, सप तैरदे ने, इन्ना जहरीला जानवर तैरदा है, कोई नहीं डुबदा। घोड़े तैरदे ने, मज्जां तैरदियां ने, हाथी तैरदे ने, शेर तैरदे ने, चीते तैरदे ने, मनुख डुबदे ने। मनुख डुबदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, वरना पानी मनुख नू भी नहीं डुबदा। कुछ सियाने कहंदे ने जिन्हें किधरे पानी विच एक दिन भी जो है तैरना सीखिया ते तैरदा है, जीवन भर इसनों नहीं भुलेगा। बाकी विद्या कला भुल सकती है, तैरना नहीं मनुख भुलदा। जम्मू तवी विच मैं एक दफा अभ्यास किया, मैं कह 30-40 साल हो गए, बहुत पुरानी गल, पाकिस्तान तो आए सी, दरिया विच तैरदे होंदे सी, टोची च देखदे आ जिस तवी दे, भुल गया कि मैनू आउंदा। 2-3 चंगे तैराक विचकार सन, मैं कह देख लेना जे डुब्बा ते फिर संभाल लेना। मैं तजर्बे दे तौर ते देखिया, नहीं डुब्या मैं, तैरना मनुख नहीं भुलदा। अगर आ गया, किसे नूं भी आ गया, बाकी भुल सकदा, संगीत सिखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, तबला सिखिया अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, कोई भी कर्म कोई भी कृत अभ्यास नहीं करेगा भुल जाएगा, तैरना मनुख नहीं भुलदा। प्रकृति कुदरत भी चाहती है मनुख ना डोबे, ये ना डोबे। और वाकई पानी मनुख दा वैरी नहीं है। तुसी आखोगे फिर डोबदा क्यों है? हैरानगी है, जिंदा मनुख डुबदे ने, लाशां ते तैरदियां ने, मुर्दे ते तैरदे ने। मैं बनारस विच प्रयागराज विच देखिया जिन्हां नूं जल प्रवाह करदे ने गंगा विच, बहुत वड्डा पत्थर उन्हां दे नाल बनदे ने, अद हो गई, बंदा तो उंज डुब जांदा है, ये मुर्दे नाल पत्थर बनने ने, ये डुबदा ही नहीं। लाशां तैरदियां ने, जिंदा मनुख डुबदे ने। कारण कि भय करके जिंदा मनुख

موجاں مان لے مڑ کے زندگی لبنی ہے، یہ دنیا پھر ملے گی، جو کچھ کرنا ہے کر لے، رب نو کس نے دیکھے ہے؟ اور رب کتھے ہے؟ بابر پہلا مغل سمراٹ ہندوستان دیش مغلیہ سلطنت دا جنم داتا بابر، روزوں نو بہاروں میں وہ دل ربا خوشست بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کھا لے پی لے ہر طرح دیا موجاں مان لے، اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے؟ خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ یہ بابر دی سوچنی ہے۔ پنجابی دیچ بھی ایک بول پر چلتا ہے، اے جگ مٹھا اگلا کن مٹھا، چھڈو پنجاب دیچ بھی ہے، لوکی کہہ دیندے نے اے جگ مٹھا اگلا کن مٹھا، کس نے دیکھے ہے؟ کون جاندے ہے؟ جب دیکھے ہی نہیں، بس ایک کمی ہے اس دنیا چ، جو دیکھ لیندا ہے وہ دکھا نہیں سکتا، بس اتنی کمی ہے، آج تک کسی نے نہیں دکھایا۔ اتھوں پھر شک بھی پیدا ہو جاندا ہے، بلکہ جنہوں نے دیکھیا سی پتا ہے دنیا نے کی آکھے تے پاگل نے، دیکھن والے نو تے پاگل کہہ دیتا۔ کمال دی گل، دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، کوئی کہے بھوت نا کو کہے بے تالا، حد ہو گئی، جو ساریاں دے بھوت نے اتارن لئی آیا ہے لوکی انہوں بھوت نہ کہندے نے، جو ساریاں دی زندگی نو تال دین لئی آیا ہے انہوں بے تالا کہی جاندے نے، جو ساریاں دی دیوانگی ہٹان لئی آیا ہے لوکی انہوں دیوانہ پہ کہندے نے۔ کبیر بھی کہندے نے کہ بنارس دے واسی مینوں پاگل کہندے نے، لوگ کہیں کبیر بورانا، کبیر کا مرم رام ہی جانا، یہ تے ہن رام ہی جاندا میں پاگل ہاں کہ میں کیا، پر لوکی کہندے نے میں پاگل ہاں۔ تے ہن میں عرض کر دیا، اگر کبیر پاگل ہے تو پھر بنارس دے کوئی بھی سیانا نہیں ہے، تے جے گرو نانک جیسی عظیم شخصیت وقت دے اوتاری پرش نو بھی کوئی کہہ سکتا ہے بھوتنا ہے بے تالا ہے، تو اس دا کارن کی ہے؟ جد بھی کوئی دیکھ لیندا ہے اودی طرز زندگی جگت نال میل نہیں کھاندی، بھگتاں تے سنساریاں جوڑ کدے نہیں جڑدا، تو سنساری تے بہ گنتی چ نے، جنہاں نے پرماتما نو دیکھا ہے اس طرح دی کرتاری آتما تے بہت تھوڑیاں نے، جوڑ جڑدا نہیں۔ تو کدرے کدرے سنساری پاگل کہہ دیندے نے، کدرے کدرے سنساری تتی تبی تے بھی بٹھا دیندے نے، نیاں چ بھی چن دیندے نے، قتل بھی کر دیندے نے، بند بند بھی کٹ دیندے نے، سولی تے بھی چاڑ دیندے نے۔ میں پراچین سنتاں دا جو تھوڑا جہا ادھین کیتا ہے حیران ہویا، کچھ ایک سنت جنہاں نے پرماتما نو جانیا اور کچھ کہہ بھی سکدے سن، چپ رہے نہیں بولے۔ چلو کئیاں کول تے کہن دی سمرتھا نہیں ہوندی، بھاشا دا گیان نہیں ہوندا، عام سنسار دی بولی نہیں جاندے، جو کچھ جانیا ہوندا ہے انہوں بیان کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے، پر کئی جاندے سن تاں بھی نہیں بولے۔ خود بلے شاہ کہندا ہے میں نہیں کہنا کچھ، ایک واجب شرط ادب دی ہے، ہر ہر وچ صورت رب دی ہے، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، جے میں کہہ دیاں کوئی کافر نہیں، جے میں اصلیت اگل دیا، جو کچھ میں جانے ہیں جے میں سارا کہہ دیا، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سارے پل جاون تکرار تائیں، پھر مارن بلے یار تھائیں، تھے گپتی بات سکھیندی ہے۔ پھر کہندا بلے یار دی خیر کوئی نہیں، اتنی مار پینی ہے، ساری دنیا مخالفت کرے گی، چلو چپ رہندے ہیں، نہیں کہندے۔ کچھ فقیر چپ کر گئے، بھئی کون روز روز متھا مارے پتھراں دے نال، کچھ ہمت وار ہوندے نے بول پیندے نے، چلو بول دیا، ہزاراں چ کسے ایک نے بھی سن لی تو گل بنے گی، کوئی گل نہیں، انہوں نے رسک لیا۔
انہوں نے خطرہ مل لیا. یہ دو طرح دے فقیر، ایک تے او سن چلو چھڈو، ایک اور امیر خسرو دا بھی بڑا سندر بول ہے. وہ کہندا ہے اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے. تسی مینوں پاگل آکھے ٹھیک، آپاں بھی قبول کر لینے ہاں پاگل. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. کس کس نال میں متھا مارنا سی، چلو چنگا ہویا تسی مینو پاگل آکھے ساڈی جان چھٹی. کچھ انج بھی فقیر ہوئے نے، کہنے ٹھیک ہویا چنگا ہویا تسی پاگل کہہ دیتا ہے ساڈی جان بچی، تھوڑے نال متھا مارنو ہٹ گئے، تسی آپ ہی دور ہٹو گے بھی پاگل ہے. اچھا ہوا دیوانگی کام آ گئی اپنے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. پر کچھ ایسے سن دیا وس ہو کے سمجھان نو چل پے، نہیں سمجھا دے چلو ہزاراں چ کوئی شاید ایک قد سمجھ جائے. چلو بوٹے لگانے ہاں شاید ایک نو پھل پھل لگ جان، محنت کر دیا. تو جنہاں نے اس ڈھنگ دی محنت لئی کیتی، خطرہ کی جو ہے مل لیا، بس اوہی ابل دی دیکھ دے چوبا لے گئے، انہاں دے ہی بند بند کٹے گئے، انہاں نو ہی تسیحے دیتے گئے، اوہی چاندنی چونک دے شہید ہوئے، خطرہ مل لے لیا. کہنی ہے جڑی گل کہنی ہے سو کہنی ہے. بلے شاہ کہندے نہیں، اتنی سیما تک کہنے جنی ہضم ہو جائے، باقی نہیں کہندے. تو جڑی ہضم ہو گئی ہے وہ تو سچ ہے ہی نہیں، سچ کتنے ہضم ہوتا ہے جگت نو. یہ مطلب سچائی چھپا لئی، چپ کر گئے. انج کہہ لو بلے شاہ ایک کمزور فقیر ہے، کمزور رس دی طرفوں ادھیاتمک بل دی طرفوں نہیں، خطرہ مل نہیں لینا. کہندے نہیں چلو چھڈو، کون متھا مارے گا. جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں، کیونکہ مسلمان کہندے نے ہندو کافر ہے. جی میں کہہ دیا کوئی کافر نہیں تو پھر خیر نہیں ہے، یہی مسلمان پتہ نہیں میرے نال کی ویوہار کرن. تو صاف کہندا ہے پھر مارن بلے یار تھائی تے گپتی بات سکھیندی، گپت رکھدے ہیں نہیں کہندے، چپ رہندے. کچھ تے چپ کر گئے، اصلیت نو جانے ہاں لیکن آکھیا نہیں. پر کچھ ایسے جو بول پئے، تو انہاں بولن والیاں نو پرتھم تے زمانے نے کہیا پاگل نے، سمچے بنارس نے کہہ دیتا ہے کبیر پاگل ہے. اور ایسا کیڑا تسئی ہے جڑا اس نو دیتا نہیں گیا، یہ بھی میں عرض کر رہا. سکندر لودی نے جیل چ پا دیتا سی، مشکا بن کے گنگا چھوڑ دیتا سی، چڑی ہوئی گنگا ہڑ تے آئی ہوئی. یہ تے گل وکری ہے، جیڑیاں لہراں ڈوب دیاں نے انہاں لہراں کر کے کبیر کنارے تے لگ گیا. گنگا کی لہر میری ٹوٹی جنجیر، مرگ چھالا پر بیٹھے کبیر. لیکن یہ تے ڈوب دیتا گیا سی، انہوں غرق کیتا گیا سی. کبیر تے چوری دا بھی الزام لگایا، یاری دا بھی الزام لگایا. اگر کبیر چور ہے تو پھر کوئی ساد نہیں، اور اگر کبیر دراچاری ہے تو پھر کوئی سداچاری نہیں، اور کبیر پاگل ہے تو پھر کوئی سیانا نہیں. تو پر یہ سارے الزام لگے نے، دور کیوں جاندے ہو؟ بابر نے گرو نانک نو جیل دے چھپا دیتا ہے، جہانگیر نے گرو ارجن دیو جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اورنگزیب نے گرو تیغ بہادر صاحب جی نو جیل دے چھپا دیتا ہے، اور دلی دے چھ ایسے پنجرے دے چھ بند کیتا ہے جے دے چھ سدگر ہل بھی نہیں سکتے سن، سولہ سن کھڑے نے، نہ بیٹھ سکتے سن نہ ہل سکتے سن، اس پنجرے چ بند کیتا ہے کوتوالی دے چھ. قصور کی قصور وار جگت دے چھ بے قصور ہونا بھی ایک قصور ہے، یہ بھی میں عرض کر دیں. قصور واراں دی دنیا دے دراصل بے قصور ہونا بھی ایک پاپ ہے، انج کہہ لو.
सारी दुनिया दे इस पागलपन दे इकट्ठ दे च एक सियाने दा जीवना औखा हो जाता है। इस वास्ते कुछ फकीर ऐसे हुए ने जे दुनिया ने पागल किया ते कबूल कर लिया, ठीक है चलो झंझट मुकया, मथा नहीं मारांगे, अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते, चुप कर गए। पर जिड़े बोल पे नहीं चुप कीते फिर तसी है। दुनिया दे तमाम इस तरह दे पुरुषां नूं जिहड़ी सजा दित्ती गई है तो पुछया जा सकदा कि चोरी की थी, यारी की थी, कोई कतलो गारत कीता, इस तरह कुछ भी नहीं सी। एक सच्चाई बयान कर दित्ती जो जगत दी पकड़ विच नहीं आउंदी सी, कि जो जगत नाल तालमेल भी नहीं खांदी सी। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा दो तरह दे बंदियां दा जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, एक परम संत दा और एक पागल दा। जिस संत दा समय दी राजनीति नाल तालमेल बैठ जाए भुल के भी ना कहना यह संत है, मैं अर्ज कर दिया वो तो कोई संत नहीं है। जिस संत दा जगत दी समाजिक जिंदगी दे नाल तालमेल बैठ जाए गुस्ताखी माफ, कोई संत नहीं है। क्योंकि मैं हकीकत थोड़े सामने पे रखदा, राजनीति नाल तालमेल बैठ जाए इन्हां तमाम संतां नूं वाइट पासपोर्ट मिले, डिप्लोमेट पासपोर्ट, हर तरह दी सहूलतां, हर तरह दे सुख जो राजनीतिक चाहुंदे ने बोलो, जो राजनीतिक चाहुंदे ने उस तरह जीवो। तो यह संत कोई राजनीतिकां तों उच्चे नहीं ने, यह भी मैं अर्ज करदे आं, चाहे हिंदू जगत दे ने, चाहे वह सिख जगत दे ते चाहे मुस्लिम जगत दे ने, उत्थे ही ने जिथे संसार खड़ा है ये उत्थे ही ने। पर जगत नूं समझते है नहीं, जगत नाल तालमेल बैठ जांदा है, खुश है, बड़े खुश ने, जगत भी खुश आउंदा है, जांदे आ सानूं असीस दे देंदे ने, साडे लई अरदास कर देंदे ने, साडे लई जन्नत दे दरवाजे खोल के रखणगे, साडी बांह पकड़नगे, ठीक है। पर मैं अर्ज करां जो आप दोज़ख विच जी रहे ने की जन्नत दे दरवाजे खोलणगे। पर है भरम बुलेखा जगत दे ऐसा है, अक्सर जिन्होंने इस रमज नूं समझिया जाणिया दो श्रेणियां च यह फकीर तकसीम आउंदे ने। एक ते ओ जो बोल पाए किया कुछ, और जद कुछ किया तो बाबर जैसे हुक्मरान ने बंद कर दिता है, जहांगीर ने छेवें पातशाह नूं भी केले दे च बंद कर दिता सी, ईसा सूली ते चढ़िया होया है, सुकरात नूं जहर दा प्याला दे के मार रहे ने एथेन विच, यूनान दे वासी, हैरानगी दी गल, जिथों सभ्यता सारी दुनिया विच फुटी, तहजीब एक खास उसे इलाके विच इक चोटी दे दार्शनिक पुरुष नूं एक संत नूं सजाए मौत दिती जा रही है। कहिंदे ने जो मैं इतिहास पढ़िया, जिस मनसुख ने सजा सुनाई तरस उसनों भी आ रहा सी, पर वक्त दी हकूमत ते रियाया खिलाफ सी सुकरात दे, अंदरों मुनसफ नहीं चाहता सी इनू सजाए मौत दिती जाए। उन्हें सजाए मौत दा फैसला सुनाने तो पहले सुकरात नूं कहा कि फैसला जो सजाए मौत ही थोड़े लिए हो सकता है वापस लिया जा सकता है, तुसी इस वतन नूं छोड़ दो, इस इलाके चो निकल जाओ, असी कुछ नहीं कहंदे तुहानू, चुपचाप चले जाओ। सुकरात कहण लगा फिर उत्थे मैनू फांसी लगेगी जिथे जावांगा, फिर उत्थे जहर दा प्याला पिलाणगे। कहिंदे फिर ओह नवीं थां ते फिर मैं नवां पुआड़ा खड़ा करां, फिर ओह लोक मैनू जहर दा प्याला देण ते मैनू मारन, बेहतर है तुसी मारो इत्थे, इत्थों दी मौत कबूल है। हुण नवें सिरों जिस टिकाने ते मैं पहुंचया कि तुसी मैनू सजाए मौत दोगे तो मैं जिथे जावांगा आखिर माहौल यही बनेगा। मैं लोगां दी तर्ज जिंदगी नाल सहमत नहीं, मैं जगत दी राजनीति नाल सहमत नहीं,
तो लोग ते खिलाफ होणगे और अंजाम ए होएगा मैनू सजाए मौत दिती जाएगी इत्थे ही कबूल है मैनू मारो। अश्क बार अखां दे नाल सजाए मौत सुनाई गई और उस वक्त दा इलाज जो है उत्थे एक तौर तरीका सी जहर दा प्याला दे के सजाए मौत। जहर दा प्याला दिता गया ये जद पीण लगा है मुनसफ ने सुते सिद्ध पूछ लिया कोई घबराहट कोई चिंता कोई थोड़ी मनोदशा मैं जानना चाहना की है। सुकरात कहिंदे ने जे मर के भी मैं नहीं मरना तो चिंता केड़ी गल दी ते जे मर के मैं मर ही जाना है तो फिर चिंता केड़ी गल दी। दोवें बोल बड़े गजब देखा है जे मैं मर के भी नहीं मरना तो फिक्र केड़े गल दा ते जे मैं मर के मर ही जाना है फिर कादी चिंता। भावे उन्हां लोकां दे पल्ले कुछ पिया भावे ना पिया पर ये दो लफ्जां च बहुत वड्डी गल कह गया जद मैं मर के भी नहीं मरना तो फिर चिंता केड़ी गल दी ते वाकई मर ही जाना है फिर केड़ी की चिंता फिर केड़ी गल दी चिंता। जहर दा प्याला इसने खुशी खुशी नाल पी लिया सूली ते चाड़ दिता गया एक बेकसूर ईसा। सारी जिंदगी दर दर दियां ठोकरां च लंघी मुहम्मद साहब दी बदर दी लड़ाई दे च आप दे अगले दंद भी पत्थर नाल तोड़ दिते गए सन। मुहम्मद साहब दे अगले दोवें दंद तोड़ दिते गए सन पत्थर चुक के ऐसा जोर दा मारिया कि दोवें दंद तोड़ दिते गए और जवान शरीर होवे ते पुख्ता दंद होवन ते पत्थर नाल तोड़े जान तुसी खुद अंदाजा लगाओ कितनी पीड़ा होई होनी है शरीर नू कितना कष्ट होया होना है। सारी दी सारी जिंदगी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी संघर्ष विच लंघी है। अल्लाह यार खां ते कहिंदे ने आगा ने कभी तुझको संभलने न दिया था आराम से पहलू को बदलने न दिया था तुसी ते एक रात भी सुख दा आराम नहीं कर सके। सारी जिंदगी संघर्ष दे चलंगी भज दौड़ दे चलंगी। अला यार हां कहिंदा है इते सागर दी तरह ने जिवें उपर लहरां इधर भज रही ने उधर भज रही ने थले ठहराओ है अंदरों ये दरवेश ने बारों ते बिल्कुल राजे ने भज दौड़ बड़ी है पर अंदर बिरती टिकी हुई। इसे नंद लाल कहिंदे ने हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बारों बड़ी भज दौड़ है अंदर सुकून है शांति है ते भाणे विच रजा विच रहण दी बिरती भी है। पो मां दी ठंडी रात है पैरां च जुत्ती नहीं संगी साथी भी नहीं दो दिन दा अन्न भी पेट दे च नहीं गया और माछी वाड़े दा ए मरुथल ठंडी रेत उत्थे ही सौं के आप कहिंदे ने यारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़िया दा रहना। जगत दे अवतारी पुरशां नाल संसार ने कीता की है तालमेल नहीं बैठा। मैं फिर अर्ज करा जिस संत दा संसार नाल तालमेल बैठ जाए संसार तो कोई उच्चा नहीं ये भी मैं अर्ज करते हैं। जिस संत दा राजनीति नाल तालमेल बैठ जाए अजोके राजनीतिकां नाल या पुराणियां नाल वो उन्हां राजनीतिकां तो कोई उच्चा नहीं है उतना ही है। नहीं तालमेल बैठिया गुरु नानक दा बाबर नाल नहीं तालमेल बैठिया गुरु अर्जन देव जी दा जहांगीर नाल नहीं तालमेल बैठिया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा शाहजहां नाल और नहीं तालमेल बैठिया गुरु गोबिंद सिंह जी दा औरंगजेब नाल बिल्कुल नहीं बैठे। और इकबाल ने तो बहुत कीमती गल कह दी कहिंदे सारे संसार विच दो पुरश ऐसे ने जो उदों भी ना समझे गए अज भी ना समझे गए कुछ समा पा के बाकी महापुरश उन्हां दी कुछ समझ आई ते लोगां ने पूजना शुरू कीता जैसे कि ईसा नूं उदों ते उसूली ते चाड़िया उदों ते मुहम्मद साहब दा जीवना हराम कीता होया सी हुण सारा अरब मुसलमान। पर
एक हकीकत है, दो पुरुष उन्होंने अपने देश देश भी रुतबा नहीं मिले, एक महात्मा बुद्ध एक गुरु गोबिंद सिंह, इन्हों दोहां नहीं मिले। गजब की गल, दोहां का जन्म भी बिहार दे च है। महात्मा बुद्ध भी बिहार दे च पैदा होए, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी बिहार दे च पैदा होए, पटना बिहार उस इलाके च। ये कबूल क्यों नहीं होए? वर्ण वंड नू मनन तो इनकार कर दिता महात्मा बुद्ध ने, और वर्ण वंड दियां धजियां उड़ा दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जात पात नू मनन तो इनकार कर दिता महात्मा बुद्ध ने, और जात पात नू मनन तो इनकार कर दिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ब्राह्मण दी रौ रीति तो बिल्कुल निराली चाल चली महात्मा बुद्ध ने, और कलगीधर ने भी साफ कह दिता, जब ए गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। विपर रीति की है कि जन्म तो ही कोई शूद्र है, जन्म तो कोई ब्राह्मण है, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो कोई शूद्र नहीं हो सकता, जीवन तो शूद्र हो सकता है, जन्म तो कोई संत नहीं हो सकता, जीवन तो संत होगा, जन्म तो कोई चोर नहीं हो सकता, जीवन तो चोर होगा, कर्म करके पहचान होगी, पर वो जन्म तो पहचान करते सन, कर्म तो नहीं। महात्मा बुद्ध सहमत नहीं हुए, मनुख की पहचान उसके कर्म तो होगी, जन्म तो नहीं। हो सकता है कि चोरों के घर भी संत पैदा हो जाए, किसी दुष्ट घर दे भी संत पैदा हो जाए, होया है प्रहलाद, होया है हरनाकश की है दुष्ट है, ते प्रहलाद की है संत है। और हो सकता है किसी देवते दे घर दे भी दैंत पैदा हो जाए, बहुते होए ने गुस्ताखी माफ। गुरु रामदास जी महाराज गुरु नानक की गद्दी दे वारस, ते पृथ्वी चंद की है, उदा ते जहांगीर नाल तालमेल बैठे सी, उते ता जिंदगी गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़ता रहा, उते अपने पिता नाल भी लड़ता रहा। गुरु रामदास जी महाराज नूं कहना भी पिया, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो झगरत पाप। पर झगड़दा सी, ये लड़दा सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक कमी है धार्मिक दुनिया दे, जद कोई देख लेंदा है दिखा नहीं सकता, जद कोई समझ जाता है पूर्ण तौर ते समझा नहीं सकता। बहुत बोले ने, बहुत बोले ने, कई दफा जगत दे अवतारी पुरुष कौन समझे है, ते किदी समझ च आया है, किसने अपनाया है। समझाण दे च असमर्थ रहे ने महापुरुष, और फिर जगत नाल सहमत ना होण करके जगत मुखालफत ते भी आया है, बड़ी भारी मुखालफत। मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध दे पैर हिंदुस्तान दे चों उखाड़ दिते गए सन, उखड़ गए, अज तक उखड़े हुए ने। भावें अंबेडकर ने यतन करके कोशिश करके दोबारा लाण की कोशिश की थी, उतनी गल नहीं बनी। और इसे तरीके दे नाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भी पैरां नूं आदकाल तो उखाड़न की कोशिश हुई, यह भी मैं अर्ज करते हैं। यह गल वखरी है, कुछ बात है कि ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वरना सिखी दे आदकाल तो ऐसा होया। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, वकत दे राजनीतिका नाल गुरु नानक दी नहीं बनी, गुरु अर्जन देव जी दी नहीं बनी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी नहीं बनी। सुकरात वकत दी राजनीति नाल सहमत नहीं होया, कीसा सहमत नहीं होया, मुहम्मद सहमत नहीं होया, सारा इतिहास पढ़ के वेख लो। इस वास्ते समाज नूं ते राजनीति नूं ए कबूल भी ना होए, और किधरे किधरे कह दिता गया है पागल ने, साफ कह दिता कि गुरु नानक देव जी महाराज नूं उतने चमड़े ने, आप कहिंदे ने दूर क्यों जाओ। गालबन सन दूर क्यों जाओ, गालबन सन कोई 40 दिन
महात्मा गांधी के मुंह भी निकल गया सी कि गुरु गोबिंद सिंह भुला होया रहबर है। विचार की गल करद्या करद्या तलवार की गल करन लग पिया। शांति नाल पेश आने वाला एकदम क्रांति ते आ गया। बड़ौदे दे बहुत वड्डे जलसे दे च उन्हां दे बोल सन। खुश किस्मती है उन्हां दिनां च जिंदा सन प्रिंसिपल गंगा सिंह। बहुत सियाने बड़े सुलझे है बड़े आला दिमाग दे मालिक। वो जा पहुंचे गुजरात अहमदाबाद दे च। उदों महात्मा गांधी अहमदाबाद दे सन। और जद अपना तारुफ कराया कि मैं सिख मिशनरी हाँ सिर्फ इस विषय से थोड़े नाल विचार करन लई आया कि गुरु गोबिंद सिंह एक पुल्ला होया रहबर है। खैर राजी हो गए। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा आप गीता का पाठ करते हो और गीता नूं मां कहिंदे हो। हां मां है मेरी। सवेरे शाम गीता का पाठ करते सन। गंगा सिंह कहन लगे थानू पता है इस मां करके महाभारत का युद्ध होया सी। ए मां ना होंदी युद्ध नहीं होना सी। इस मां ने युद्ध कराया है। इतना वड्डा खून खराबा इस मां करके होया जिस मां नूं तुसी दिन रात नाल ले फिरदे। गीता करके होया है। अर्जन हथियार सुट के मैदान जंग छोड़ के जा रहा सी। उन्हें साफ कह दिता सी ए भगवान मैं नहीं लड़ना। इस सामने मेरा चचेरा भरा है दुर्योधन। इस सामने मेरा पितामा खड़ा है भीष्म। और उस सामने मेरा गुरु खड़ा है मेरे नाल लड़न वास्ते द्रोणाचार्य। अपने गुरु नु मार के अपने पितामे नु मार के अपने भरा नु मार के अगर मैनु जित मिली भी इस तरह के सिंघासन से बैठ के मैं की राज करना सवाय रोना ही होगा। मैं इस तरह का राज नहीं चाहिए। जो अपने भरावां नूं मार के मिले अपने बुजुर्गां नूं मार के मिले ते अपने गुरु नूं मार के मिले। ये अर्जन की सोचनी बड़ी गजब दी। पर कृष्ण समझांदे ने अर्जन अपने जिस्म देते अगर कोई मवादी फोड़ा निकल आए ते बड़ी पीड़ा होवे बड़ी दर्द होवे ते ए थोड़ी आखी दा इसनु चीरा नहीं देना मवाद नहीं कढ़नी। ठीक है फोड़ा अपना है बिल्कुल अपना है तां वी जरा दे हवाले असी करांगे नु चीर दे मवाद कढ़ दे ताकि शरीर नु शांति मिले। ए सब तेरे अपने ने पर अर्जन देश धर्म नु ते मनुखता नु चमड़े मवादी फोड़े ने तो इन्हां नु चीर दे तेनु कोई पाप नहीं लगेगा। कहने ने इस ढंग नाल समझाया। अर्जन ने सुट्टे हुए शस्त्र फिर चुक ले। अला यार खां जोगी ने भी इसका जिक्र किया और बड़े सोहने अंदाज दे कटवा दी एशिश शाम ने गीता को सुना कर। गीता दा फिलसफा सुना के सुटे हथो हथियार चुकवा दिते श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने चुक लाए। अला यार खां कहिंदा है गीता दा फिलसफा सुना के किसी दे अंदर बीरस भरना ए गल कुछ होर है पर ए गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल कुछ होर है। क्यों कटवा दिए शिष शाम ने गीता को सुना कर रूप फूंक दी गोविंद ने बेटों को घटा कर। गीता दा फिलसफा सुना के किसे अंदर जोश भरना ए गल कुछ होर है पर अपने ही बच्चियां नु शहीद करा के किसे अंदर मरण दा चाव पैदा करना ए गल कुछ होर है। अला यार खां किसे नु पानी विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा है। किसे नु मरण दी जाच सिखानी होवे पहले आप मरना पैंदा नहीं तो मुश्किल हो जाती है गल। ये अला यार खां कहता है। खैर जद गंगा सिंह ने कहा इस मांग करके युद्ध होया है जंग हुई है बड़ा भारी खून खराबा होया है तो ये मां भी भोली हुई रैबर हुई पर कृष्ण भी भोले रैबर होया। अर्जुन ते जा रहा सी वो ते कहिंदा सी मैं हिमालिया चले जाना है।
मैं उत्तराखंड जाना है, तप करना है, जप करना है, मैं नहीं लड़ना, यह राजपाठ मैनू नहीं चाहिए। मेरे मन में बैराग पैदा हो गया है, लड़े बिना बैराग पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सोचता पाया अगर जित भी हो गई भरावान मारांगा, गुरु नू मारांगा, पितामे नू मारांगा, तो फिर राजपाठ मिलेगा। इस सारी जिंदगी मेरे मन पर बोझ पिया रहेगा कि मैं अपने भरा नू मार के राज लिया है, मैं अपने गुरु नू मारिया है, मैं अपने पितामे नू मारिया, मैं नहीं लड़ना। लेकिन कृष्ण ने लड़ाया, आख्या नहीं, भावे तेरा भरा है पर दुष्ट है, देश धर्म नू चिंबड़े होया मवादी फोड़ है, गलत है। भावे तेरा गुरु गुरु है पर गलत पख ले रहे है। वाकई इस गुरु ने गलत पख लिया। भरी सभा विच द्रौपदी नगन की जा रही है, गुरु बोलदा नहीं। भरी सभा दे द्रौपदी नगन की जा रही है, भीष्म पितामह बोलदा नहीं। ये वक्त दे गुरुआं दा हाल सी कि जब गुरु ही आवाज नहीं उठाते पे जुलम के खिलाफ, तो बाकिया ने की खाक उठानी सी, किस तरह उठानी सी। इस वास्ते कृष्ण ने कहा भावे ये गुरु है पर इस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा, भावे तेरा पितामा है पर यह भी झूठ की मदद से खड़ा है, तू चीर दे इन्हां नूं, पाप सारा मेरे जिम्मे, इसका मैं संकल्प करदा, तू लड़। ये हल्ला शेरी कृष्ण ने दिती, सुटे शस्त्र चुक ले। तो प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा इस महाभारत दे युद्ध बारे, इस खून खराबे बारे, इस गीता बारे जिसनों तुसी मां कहिंदे हो, इस बारे आप दी की राय है? पहले तो महात्मा गांधी ने कहा ये युद्ध नहीं हुआ, ये मानसिक युद्ध की बात है, ये लड़ाई अंदर हुई है, बाहर नहीं हुई। तो गंगा सिंह जैसा रोशन दिमाग बंदा कहने लगा जे ये लड़ाई कुरुक्षेत्र दे च नहीं हुई, सिर्फ अंदर ही हुई है, तो फिर कृष्ण जी भी मथुरा दे च नहीं हुई, कोई अंदर ही हुए होंगे, तो भी कोई नहीं हुआ। कहिंदे ने महात्मा गांधी ने अपने बोल वापस ले, ए मैं समझदा उसकी बुजुर्गी सी कि उसने कबूल कर लिया, बोलो ये मैं तो जो उन्होंने हिंदी का गुजराती का पेपर निकलता से उसने उन्होंने तस्लीम किया भी मेरे को शब्द गलत निकले ने, मैं सिख जगत तो माफी मंगना। उसने अपने शब्द वापस ले सन, अपने बोल वापस ले सन, वरना भारत के तमाम प्राचीन अवतारी पुरुष अपने हाथ शस्त्र रखते ने, राम दे कोल धनुषबाण है। यह गल वखरी है, महात्मा गांधी का धार्मिक तालमेल से बैठा कृष्ण नाल, लेकिन राजनीतिक तालमेल कृष्ण नाल नहीं बैठे, वह राम राज चाहते सन। कहते राज चाहिए राम का, कमाल की गल, धर्म चाहिए कृष्ण का, राज चाहिए राम का, कृष्ण का राज नहीं चाहिए। राम राज की वह गल करते रहे, रामायण एक दिन भी नहीं पढ़ते सन, पढ़ते गीता सन। कारण श्री कृष्ण वो उन्हां दी सोच नहीं, किसी को खुलासा मैं थोड़े सामने रखांगा। वो कहिंदे सन एक पासे मनुख है एक पासे कानून है, ते जे मेरे सामने मसला खड़ा हो जाए, कानून नू बचाना है कि मनुख नू बचाना है, तो मैं मनुख नू बचावांगा, कानून रद्द हुंदा है ते होण दिओ। मनुख कानून लई नहीं है, कानून मनुख लई है। मनुख मर्यादा लई नहीं है, मर्यादा मनुख लई है। राम दा फैसला ए सी जे मनुख सामने ते मर्यादा सामने, ते दोहां दे च इक नूं बचाणा होवेगा, मनुख नूं कुर्बान कर देंगे मर्यादा बचावांगे। इस वास्ते उन्हां नूं मर्यादा पुरशोत्तम आख्या गया, मर्यादा बचावांगे, बंदे नूं फांसी ते चाड़ना है तो चाड़ देंगे। ब्राह्मणां दी बनाई हुई मर्यादा सी कि शूदर वेद नहीं पढ़ सकता और शूदर वेद नहीं सुन सकता, अगर सुन लवे तो उहदे कन्न विच सिक्का डाल दो और उन्हें फांसी ते चाड़ दो। राम राज दे शंभूक नाम दे जीवन नूं फांसी ते चाड़िया गया। मैं ते भारत विच ऐसा भी आख्या, राम राज चाहते हो जितने शूदर ने इन्हां नूं फांसी ते चाड़ना पैगा, क्योंकि रामायण भी पढ़ते हैं, वेद भी हुण सुन लग पए ने, मंदरां च भी जाण लग पए ने, किधरे तुसीं नहीं भी इन्हां नूं जाण देंदे। इन्हां दे सारयां दे कन्नां च शीशा ढालना पएगा, फांसी ते चाड़ना पएगा, राम राज विच इही कुछ होया सी। और जे किधरे किसे धोबी ने किसे ने एवें खामा खा साडी पत्नी दे उत्ते शक कीता, ते घरों भी कढ़ना पएगा, क्योंकि राम ने घरों कढ़ दित्ती सी।
तो भी वे कहने थे। फिर जिस किसी पड़ोसी ने उंगल उठाई कि स्त्री ठीक नहीं तो घरों कढ़ो। जिथे तक मर्यादा ते कानून दा सवाल है, कृष्ण दा यह कहना सी कि मैं फिर मनुख नू बचावांगा, मर्यादा कुर्बान होंदी ते होण दो। राम कहिंदे सन नहीं, मैं मर्यादा नू बचावांगा, मनुख कुर्बान होंदा ते होण दो। इस वास्ते गांधी ही राज ते चांदे सन राम दा, धर्म चांदे सन कृष्ण दा, क्योंकि कृष्ण दे धर्म दे च ज्ञान बड़ा सी, जो गीता दा फिलसफा है बड़ा ज्ञान है, बड़ी गहरियां गल्लां ने। अर्जन दे बहुत उच्चे उच्चे प्रश्न ने और कृष्ण दा बहुत बड़ा जवाब है। और गजब दी गल, जिसने शस्त्र चुके होवन ते अपने ज्ञान ते दलीलां दे नाल फिर शस्त्र चुकवा लवे, तो दलीलां ते बड़ियां प्रबल सन, समझाण दा ढंग ते बड़ा प्रबल सी, राम कोल नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करदे आं। इस वास्ते हिंदू जगत 14 कला अवतार मनदा है राम नो, 16 कला मनदा है कृष्ण नो, उसनु वड्डा मनदा है, उसनु महान मनदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा ए बोल, जद कुछ एहलकारा ने कहा तुसी फकीर हो, थोड़े हाथ दे च माला चंगी लगदी है, थोड़ी जबान ते अल्लाह खुदा दा नां चंगा लगदा है, कि तुसी किहड़े पासे पै गए। पता सतगुरु की कहंदे ने, श्री मुखवाग पादशाही दसवीं जफरनामा, बलाचार गई दरमिया आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मेरी माला ने कम नहीं कीता, मेरी शांति ने भी कम नहीं कीता, मेरे ज्ञान का भी असर नहीं होया। पवन जब चल रही है, दरखत झूलते ने, पत्थर नहीं झूलते। और पत्थरों देते उस पवन का कोई असर नहीं पैंदा। मैं ज्ञान दी हवा बड़ी चलाई, मैं शांति दा वातावरण बड़ा बनाया, मैं मिठास दी खुशबू बड़ी खिलेरी, पर पत्थरां ते कोई असर ही ना होया। बलाचार भी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम, मैं ते लाचार हो गया, मजबूर हो गया, तोप चुक ली, बंदूक चुक ली, तलवार चुक ली, वरना ए मेरे स्वभाव दे अनुकूल नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे ने, ए मेरे स्वभाव दे अनुकूल नहीं है। हेमकुंड दा किथे तपीश्वर होवे ते पुराने संस्कार ऋषि मुनिया वाले होवन, चुकनी पै जाए तलवार तो फिर कुछ ना कुछ ते मजबूरी हो ही होनी है। मजबूरी आप कहंदे पैने, बलाचार गी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम, चुंकारस हमा हिलते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, ऐ औरंगजेब, जद मेरी शांति, मेरे विचार, मेरे ज्ञान तेरे ते प्रभाव ना पावन, तो तेरे जैसे दुष्ट लई तलवार चुकना भी मैं अपना धर्म समझदा। चुंकार समा हील ते दर गुजस्त, हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। इस बुलेखे च ना पई कि मैं निरा संत हां, इस संत दे अंदर कोई सिपाही भी बैठा है। किधर ऐसा ना समझ लें कि सिर्फ फकीर है, इस फकीर दे अंदर कोई क्रांतिकारी भी बैठा है। तालमेल नहीं बैठा गुरु गोबिंद सिंह जी का औरंगजेब नाल। तमाम हिंदुस्तान दे फकीरां ने सजदा कर दिता सी औरंगजेब नू, नहीं झुके गुरु गोबिंद सिंह। और किधरे झुक जांदे तो पता है हालात की होने सन। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कते बन कुरान की, पाप ही पर पक जाते, धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते, सहित विधान की, देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा भेदन पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की। ए बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होती, भारत च एक मंदिर भी नहीं होना सी, किधरे भी गीता दी कथा नहीं होनी सी, कोई वेद पुराणा दा नामो निशान नहीं होना सी। इस तरह दी एक मूर्ति। पंडित मदन मोहन मालविया ने ते कहा सी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी दा एहसान है भारतवासियां ते, वो इस ढंग नाल चुकाया जा सकदा है कि हर भारतवासी दे घर दे च एक सिंह होवे, गुरु गोबिंद सिंह दी तस्वीर होवे, जींदी जागदी, सिर्फ तस्वीर ना टंगी है कागज दी, जींदी जागदी तस्वीर हर घर दे च होवे। ये पंडित मदन मोहन मालवे दे विचार सन, मालविया दे। ये गल वखरी है कि इस तरह की सोचनी वाले खो गए।
इस तरह के दूरदृष्ट जो है बंदे खो गए। एवं विचारां दे चों ये विचारां आ गई कि जद भी कोई समझ जाता है समझा नहीं सकता, जद कोई देख लैंदा है दिखा नहीं सकता, जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, तो दुनिया के तमाम अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुषां दी तुसी जीवन कथा पढ़ लो संसार ने नहीं कबूल किया। और इकबाल कहिंदे ने ये दो ते अपने देश दे च भी कबूल नहीं होए, बिल्कुल महात्मा बुद्ध गुरु गोबिंद सिंह ये दोवें नहीं कबूल होए। इतने क्रांतिकारी इन्हां दे गोल, इतने उच्चे आदर्श, इतने बारीक बीनी, जगत दा तालमेल नहीं बैठिया। संसार ना समझ सकिया महात्मा बुद्ध नूं ना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, किधरे महात्मा बुद्ध नूं कह दिता है नास्तिक है, अज तक भी ब्राह्मण कहिंदे नास्तिक है। जे महात्मा बुद्ध नास्तिक है तो फिर कोई आस्तिक नहीं है। ते थोड़े दिन पहले ही चंगे चंगियां दी जबान चो निकलिया सी, अगर गंगा सिंह उदो समाधान ना करदे ते सिलसिला चलदे ही रहना सी कि गुरु गोबिंद सिंह बोला होया रहे पर। इत्थे प्रिंसिपल गंगा सिंह जैसे सियाने मौजूद सन, उन्होंने समाधान किया, उन्होंने स्पष्ट किया तुसी अपने देश दे तमाम प्राचीन अवतारी पुरुषां दे ते निगाह मार के ते जरा देखो। पर मैं फिर भी अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस ढंग नाल कबूल नहीं होए जैसे कि होने चाहिए सन। हालांकि अला यार खां कहिंदा है इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। अगर दुनिया के विद्वान बैठ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल इंसाफ करन, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का स्वामी ही नहीं है, फिर इस नतीजे ते पहुंचनगे। ये अला यार खां दे अल्फाज ने। पर जब इस नूं आख्या गया तू मुसलमान होके ऐसा आखदा है तो तेनू कोई लोभ दिता गया होगा या डरदा मारा कह रहे हैं। गुजरात के इलाके का रहने वाला सी, जिला गुजरात पंजाब दे जो रह गया लाहौर तो परे, पैदा मारिया होया कह रहा होगा या लोभ दा मारिया होया कह रहे हैं। तू गुरु गोबिंद सिंह बारे कहना है कि रूहे जमीन ते इस तरह का पुरुष नहीं होया, और मुसलमान होके लाजमी है कि तू खुशामद कर रहे हैं लोभवश होके। पता है अगे इसने की आख्या है, अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। कहिंदा खुदा दी कसम मैं चुकदा, मैं जो कुछ कह रहे हैं ये मेरे फोके जज्बे नहीं है, मैं स्टडी की थी है, गुरु गोबिंद सिंह नूं पढ़े है, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वाच के है। अल्लाह की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। मेरे हाथ दे जिहड़ी कलम है बाणिए दी कलम नहीं है, हिसाब किताब लिखण वाली शायर दी कलम है। नगमे निकलदे ने, फिलसफा निकलदा है, गीत निकलदा है, गहराइयां निकलदियां ने। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। फिर भी मेरी इस कलम विच इतनी ताकत नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी बयान कर सके। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। एवं विचकार गल आ गई, जिन्होंने जाने वो पूर्ण तौर ते जना ना सके, जिन्होंने वेख्या वो पूर्ण तौर ते विखा ना सके। जगत ने कह दिता ये बोले हुए रहबर ने पागल ने, चाहे वो कबीर है चाहे गुरु नानक चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी। किथे कबूल होए गुरु अर्जन देव जी, अगर कबूल आंदे तो तत्ती तवी ते ना आंदे। किथे कबूल होए गुरु तेग बहादुर साहब, मैं फिर अर्ज करा जो संत महंत अवतार समय की राजनीति नूं कबूल हो जान उस राजनीति तो उच्चे नहीं ने। जिहड़े संत महंत धार्मिक पुरुष उस समय दे समाज जो है कबूल हो जान उस तरह की समाजिक जिंदगी तो उच्चे नहीं ने। बस इतनी एक पहचान है, एक कसवटी है, एक पहचान है, ये उत्थे ही ने जिथे राजनीति है उस तो उच्चे नहीं ने। ये उत्थे ही ने जिथे के समाज जी रहे है। जबकि गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तो मैं अर्ज कर रहा सी एक बिरती पैदा होंदी है जिसनूं कहिंदे ने उदास बिरती, इसका खुलासा मैं कल थोड़े सामने करांगा। मैं वेख लिया वक्त काफी हो गया, तो थानू बहुता लेट ना करिए।
सवेरे अपने काम कार जाना हों आप एक घंटा कथा करनी है तो फिर वेले फिर खामा कर थानू सारे जो है एवं ना वेला करिए कल फिर इस लड़ी नू अगां तोरांगे उदास होए बिना परमात्मा की तलाश कठिन है औखी है नहीं हो सके। सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोले

चूड़ियां ना से वंगणियां, जो शह कंठ न लगियां, जलन से बाहड़ियां। इस शब्द विच जिस रिश्ते दा जिक्र है उते ओही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन कीता। दरअसल मां बाप होवन, भरा भी होवे, दोस्त भी होवन, पति ना होवे, पत्नी ना होवे, तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार विच महसूस होंदी है। ए रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नूं गुरु भी कहिंदी है। गुरु गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, तू सड़ा गुरु है, असी तैथों प्रेरणा लैण वाले, तू समग्र जीवन नूं ज्ञान दान देण वाला है, सारे जगत नूं चानना देण वाला है। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने, उत्थे गुरबाणी उसनूं राजा भी कहिंदी है। को हर समान नहीं राजा, ई भूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे समान कोई होर राजा नहीं है, तेरे समान कोई होर पिता नहीं है, तेरे समान कोई होर मां नहीं है, तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता, तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है। मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा की दित्ती हुई ममता समझना है, पिता का दिता हुआ प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही यह प्यार दे रहा है, ईश्वर ही यह प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता का दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे, दान करे, पुन करे, भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस नूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहिंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी, मां प्यो पर हर करे तीरथ, अठसठ तीरथ घूमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए, भाई साहब कहिंदे ने कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा, ये ते भुल गया, ये जो मां तेनू मिली है ये मां नहीं, ये परमात्मा ही मां दे रूप च तेनू मिले है, परमात्मा ही ममता लुटा रहा है, परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है, ममता करनी है, तो किस रूप च करे, वह मां दे रूप च कर रहा है। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे, वह पिता दे रूप च जता रहा है, वह पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे ने कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करदा है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करदा है, भाई साहब कहिंदे रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, अठसठ तीरथ घूमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ए बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहिंदे ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहिंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरश है और बेईमान बंदा है। कारण की कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश विच कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदर बनाया जाए, घर मंदर, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, घर नूं ही मंदर बनाना है। तो घर मंदर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले, पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे, और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदर बन सकदा है। बड़ी कोशिश की थी साड़े देश दे ऋषि मुनिया ने कि जिहड़ी पत्नी है

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالوں نے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاو ایک جان کو ندر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار جت کھا دے تن پیڑیے من میں چلے وکار زندگی دا لکش اگر اسی لبھیے عام دنیاوی منکھ دا عام سنسارک انسان دا لکش کی ہے منکھ کیوں جی رہے ہیں دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے دنیاوی منکھ دے لکش دا اس پاون پوتر واک دیچ بڑا سندر چترن کیتا ہے تصویر کشی کیتی ہے آپ فرمان کر دینے دنیاوی منک سنسارک منک عام انسان آد آدمی کھان لئی جی رہے ہیں پین لئی جی رہے ہیں پہنن لئی جی رہے ہیں منورنجن لئی جی رہے ہیں پروار لئی جی رہے ہیں پروارک خوشیاں لئی جی رہے ہیں اور پھر جی رہے ہیں سون لئی نیند جیون دا آخر لکش کی ہے اس تو بنا ہور کچھ لبنا بھی نہیں کھانا پینا پہنن زندگی دے چوں کٹ دئیے منورنجن دا سارا سامان ایک پاسے کر دئیے پروارک خوشیاں نو بالائے طاقتے رکھ دئیے تے نیند نو بھی ایک پاسے کر دئیے شاید منک آج ہی خودکشی کر لو آتم ہتیا دی سوچے پھر میں جیوا ہی کہوں کس لئی جیوا جیونا عام دنیاوی منک دا بس اسے لئی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دیچ اینا تمام وستواں دی پردھانتا نہیں سی نہ کھان دی نہ پین دی نہ پہنن دی پروارک کشش بھی نہیں سی گھروں نکلے بارہ بارہ سال دی اداسی جنگل دے رکھاں تھلے ہور منورنجن بھی کی ہو سکدا سی انج کہہ لو سارے منورنجن نو بلائے طاقتے رکھے کدرے مرو تھل دا پینڈا کدرے پہاڑاں تے بھرمن سمیر جوگیاں کول کدرے تنہا بیابان جنگلاں دچ رکھاں دے تھلے واسا جس نو عام دنیاوی منک منورنجن کہندا ہے اے تے گرو نانک دے نیڑے ہی نہیں گئے پروارک خوشیاں تے نیند اس سب کچھ نو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے بلائے طاق تے رکھ کے دس دیتا ہے جیون دا لکھ صرف یہی نہیں ہے زندگی دا منورتھ صرف یہی نہیں ہے کچھ اور بھی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس سب کچھ تو بنا بھی جیونا بڑا اوکھا ہے پر اس سب کچھ واسطے جیونا بھی کوئی جیونا نہیں ہے یہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں پاون پوتر سری راگ دا ایک واک اس دے چار پہرے نے چار پدے نے انج کہہ لو چار پکھ نے جیون انہ چاراں لئی ہی بتیت ہو رہے ہیں پرتھم کھانا اور کھانا دنیاوی منک دی صرف شریرک لوڑ نہیں من دی سوچ نہیں ہے من دا چنتن ہے وچاراں دے وچ کھانا ہے سوچنی دے بھوجن ہے اٹھدا بیٹھدا پہ یاد بھوجن دی چل رہی ہے کھان دی چل رہی ہے لوڑ ہے یا نہیں سویرے تو شام تک
चिंतन इसे रही चलता है और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिए है। कोई न कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परचे और फिर परिवारक खुशियां चाहिए ने परिवारक सहमति चाहिए है और परिवार दे अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदया होया मनुख चाहंदा हुण मैं सौ जावा हुण मैनू चंगी नींद आवे हुण मैनू गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चो कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नू साफ कह दिता ऐ मेरे पुत्र नानक जे तुसी किधरे घर रहो तो मैं सोने सोने पकवान बना के थानू खिलावा और थानू खांदे आया वेख के मैनू खुशी होवे मैनू प्रसन्नता होवे। सिर्फ खान दी ही गल क्यों मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावा और खुद सिला के थानू पहनावा। सिर्फ इतना ही क्यों सुंदर घोड़ी उस ते उत्ते मैं चांदी दी काठी पावा लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करा। फिर थोड़ा एक परिवार है परिवारिक खुशियां माणो फिर सुख दी नींद सौवो। ए उसनु आख्या जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है हर वक्त आनंदी से जाते हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनु कहंदे ने ब्रह्मानंद जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है ए सारा सलाह मशवरा उसनु दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची है सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थल्ले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है ओनू अनसुणा कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है जो बुलंदियां ते खड़ा है तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार देच आगमन अजाई चला गया अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले इतनी बुलंदी तो बोले जो थल्ले खड़ देच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं उदे सिर दे उपरों लंघिया उसका तालमेल ही ना बैठिया। उन्हें शायद एवं ही कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली खास नहीं है और जो दो खड़ देच बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां देच भी खड़ सी जिथे उसका तन खड़ देच कलार सी उसकी बोलनी भी खड़ नुमा सी बोल भी बड़े नीवे बोल भी बिल्कुल ही खड़ और उन्हां बोलां नू कोई मन लवे तो इंज है जिवे जिंदगी नू किसे खड़ देच गिराना होवे किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नू परम पुरखां ने अनसुना कर दिता वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोला तो और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण आज तक नहीं हो सकया। नहीं थे कितने महापुरुष आए कितने अवतार आए लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है कल्याण करना है। खड़ दे जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाली मोह पा बैठा सी गहरे गड्ढियां विच ही जीवन दा आदि हो गया सी उन्हें शिखरां नू छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए
सुपना ही मन लिया, यह हकीकत नहीं हो सकता, यह वास्तविक नहीं हो सकता, इस वास्ते सोचना ही बंद कर देता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह के पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहिंदे मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिए, ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहण लगियां, मैं ते मरदाने तो सुनिया कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं आता, कई कई दिन बिना खाणिया दे लंघ जांदे ने, और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन का जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है, भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है, और ए गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने, और की है, पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अदक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया है, और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ये मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया है। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ भिखा हो जाता है। बिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नूं रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है, और ऐसी मिठास जिस नूं किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला करिए, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी,
सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिस दा मन जितना मंदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे सलूणा नमकीन। ए भी रसा दे चाहो एक महान रस है, गुरु घर दे निहंग संग इस नू सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस। वख वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं लूण अपना रस बनाई जांदा है, और इसे ही लूण नू एक पासे कर दो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम दिता है सर्व रस। बहुत सारे रसां दी खान है ए नमक। महाराज कहते जो उसकी उस्तत मैं सुनना हां, और सुन सुन के जो आनंदित होना, और जेड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चख ले, सारे पदार्थां दा आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मने गए ने, उदे च खट्टा है तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करते ने खट।

0: खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरशीम रस ने है, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल बोल दिए, जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने, नाद संगीत दा मैं मसाला पाया है, सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च, सुनना होर रसदायक हो जांदा है, बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे च ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है, अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नू ए समझदा होया, कॉलेज ते बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्वविद्यालय तो निकलिया होया ए मनुख, अज इस नू अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले, ना दित्ती गई, तो इस दे पागल होने च कोई देर नहीं है। ए प्रधान साधन है, संसार नू इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाण दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इते विद्यालय चो सिक्के आ गए, पदार्थ की ने, संसार की है, इहदे च हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिदा उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उना गुणा नू प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणा नू रागां विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने, संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने, ते भोजन होर स्वादी हो गया है। तो अज दे इस कल युग दे दौर दे च गुरु नानक दी ए गल विश्वव्यापी सार्थिक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, जोगी भी कीर्तन करन लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया है, दरगाहां दे च भी आ गया है, काबियां दे च भी आ गया है। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलो ए रबाब दी धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते मसाला है संगीत, भोजन नू होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले ने। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्नू 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह दे भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून दे विकार पैदा करदा है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर दे रोग पैदा करदा है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकदा है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है। क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, ओ खा लिया। पर जद फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जा चाहिए, सभा नू समझन दी जा चाहिए, सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदो जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणियां दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुआं दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीर के ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने वह दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे वह भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ करदे ने यह इना दे चीखण की आवाज है तड़पदे हुए किसी पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनू तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए दर्द महसूस होना चाहिए फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़त करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल की जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल की गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वह विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वह अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनू सभ्य नहीं कहा जा सकता असभ्य मनुख है अजे उसनू सभा विच बैठण दी जाच नहीं आई अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने फिर दूसरा आप पहनने दा उपदेश देंदे ने
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार खान पीण तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ आउंदी है पहनण बारे पशुआं ने नहीं सोचे पंछियां ने नहीं सोचे धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत इन्ना नंगे पशुआं नू देख के मैं ते विस्मादमई हो जांदा विस्मय हो जांदा इना दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया ए गल वखरी कि चीथड़िया विच कपड़िया विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है सभ्यता बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने मनुखता नहीं आरंभ हो सकी मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी वह पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस आउंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ आउंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਸਿੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਨ ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਢਕਣ ਲਈ ਸੀ, اسلام نے ایسا پردہ دے دیتا، ایسا ڈکیا، منک غائب ہو گیا، پردہ ہی پردہ رہ گیا، کپڑا ہی کپڑا رہ گیا، منک نہ دسیا۔ عیسائیت نے اتنی نگنتا دے دیتی، اتنی نگنتا دے دیتی، تو نگنتا ہی نگنتا رہ گئی، کپڑا اولے ہو گیا۔ درمیانہ ڈھنگ، درمیانی اوستھا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چنی، وہ کپڑا ہی نہیں کہ منک نو بالکل ڈک دے وے، کپڑا ہی دکھائی دے وے، منک نہ دکھائی دے وے، پر وہ نگنتا بھی نہیں کہ نگنتا دکھائی دے وے، کپڑا ہووے ہی نہ۔ دیکھ دیں اسی کدھرے منک نو دیکھیے تو کپڑے دے درشن ہوندے ہیں، منک دے نہیں۔ چدر ہے، برقع ہے، اور انیکاں طرح دے پردے نے، تو کپڑا دکھائی دیندا ہے، منک نہیں۔ پر ہے کدھرے ایسی نگنتا، اس نگنتا دے بھڑکاؤ واشناواں ہی دکھائی دیندیاں نے، بھڑکیا ہویا من ہی دکھائی دیندا ہے، بھڑکیا ہویا تن ہی دکھائی دیندا ہے، لباس نہیں، کپڑے نہیں۔ ایک بڑی سندر گاتھا ہے، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنی سپتنی ساڑی جگت ماتا گنگا انہاں نو کہا، جے تھانو سنتان چاہی دیئے تا اس دا آشرواد تسی بابے بڑھے تو پرابت کرو۔ سکھ نو مان دیندے نے گردیو، اسیس لو، آشرواد لو۔ بابا بڑھا صاحب نو ملن لئی تیار ہوئیاں ماتا گنگا جی، تن سجایا بستریاں نال، گہنیاں نال، پھر اپنے رتھ نو سجایا، پھر سجیاں دھجیاں نال سہیلیاں لئیاں، سکھیاں لئیاں، نوکرانیاں، داسیاں لئیاں، چل پے بابا بڑھا جی دے درشن کرن لئی۔ اکثر ایسا ہوندا ہے کہ بہت اس طرح دا شنگار منک کر لوے، لباس پہن لوے، تو اندر بھاو پیدا ہو جاندا ہے جیسے میں درشن کرن لئی نہیں جا رہا، درشن دین لئی جا رہا۔ لباس اے بھاو پیدا کر سکدا ہے، لباس اے خیال پیدا کر سکدا ہے میں درشن دینے نے۔ اور جنہ دے اندر اے بک جتنی زیادہ ہوئے گی، اتنا بھڑکاؤ لباس پیدا ہوتا جائے گا، اتنا ہی بھڑکیلے لباس دا جنم ہوئے گا کہ میں درشن دینے نے، میں نے دکھانا ہے، میں جگت نو دسنا ہے۔ پاوے ماتا جی دی بھاونا نہیں سی، پر سنسار کراؤ ریتی دے مطابق آپ نے بڑے سندر بستر پہنے، سندر گہنے نال اپنا تن سجایا، رتھ سجایا، سجیاں دھجیاں داسیاں تے سہیلیاں نال، تھال دے 36 پرکار دا پکوان لے کے آپ چلیاں نے۔ دوروں رتھ جد بابا جی نے ویکھیا، دھوڑ اڑدی ہوئی، پوچھ لیا کامے تو سیوک تھوں، اے کون آ رہے نے؟ تو سیوک نے دس دیتا، گرو کے محل جاپ دے نے۔ رسنا تو سبھاوک نکلیا، ایک گرو کے محلانوں کی بھاجڑ پہ گئی ہے۔ اے بول ماتا گنگا جی دیوی کنی پہ واپس ہو گئی۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نو شکایت کی تھی، جنہاں نو آپ مان دین دے ہو، پرتشٹا دین دے ہو، وہ اس طرح ساڈا اپمان کر دینے۔ اور بابا جی دی رسنا تو نکلیا ہے، گرو کے محلانوں کی بھاجڑ پہ گئی ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے، کسے سادھو کول جائید ہے درشن کرن لئی، درشن دین لئی نہیں۔ تھوڑا جان دا ڈھنگ، تھوڑے کپڑے، تھوڑے گہنے، یہ بھاو ہی نہیں پیدا کر سکدے کہ میں درشن کرن لئی جانا ہے۔ اس واسطے جے ہر تھان دی جان دی اپنے ایک لباس ہے، اپنا ایک پوشاک ہے، तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है, अपनी एक पोशाक है। और ओ पोशाक बार बार भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन लई आया संगत दे, मैं दर्शन करन लई आया गुरु दे, मैं दर्शन करन लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारिया की निगाह उस दे कपड़िया ते पए, तो एक ते सारिया दा ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जांदी है क्योंकि अपने वस्त्रां दी तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देच इस्त्री जात किसे हद तक बहुत जिम्मेवार है क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग देच ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कहिंदे दूसरे दिन जद सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल दे च रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने, अजे वे कदमा दी दूरी है बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया। मां नू वाकई फिक्र आउंदी है बच्चे नू भुख लगी है, कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने, एकदम भज्जे हो गए। थाल ले लिया है माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने, मिस्सा प्रशादा तोड़े है बुरकी मुंह च पाई है, प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के जो मुठ नाल तोड़े है, आखे है ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवे मैं इस प्याज नु तोड़े है। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुर सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी, ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देण लई नहीं दर्शन करण लई। इहदे च कपड़िया दा बहुत वड्डा योगदान है, कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने, और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने, मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के लियांदी है मटकियां दे राहें और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नूं शीतल करदी है ते दूजियां नूं शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तल ते उस दे सिमरन चलदा रहिंदा है, तन दे तल ते उसकी सेवा चलती रहिंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नूं देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने, किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲਮ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਸ ਪਨਹਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਸਤਰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸੰਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮੈਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਕੌਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੰਦੇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਮਾਧਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਨਹਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਤਾ ਨੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਸਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹੈਂਗੇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਗਨ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਤਾਸੋ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ

बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दे दे रहे हैं। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, मैं हरी दी चेरी नू मान क्यों दे दिता, मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दिती, और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिसने, मैं उसनु भंडिया क्यों, मैं उस दी निंदा क्यों की थी। दूजिया दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने, कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को ऐसे मरे हरी नाम। इदे सादे कपड़िया विच हरी दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास विच प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है। उदे कपड़िया नू देख के दूजिया दियां वाशनावां भटक दियां ने, भड़क दियां ने, प्रगट होंदियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चल रहा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने, और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खान पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसी दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उहदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उस दे पहरावे दी कोमलता आनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खान पीण दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है, पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करदा है, उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने, और ये पहनना धर्म दी दुनिया विच जुर्म हो जांदा है। जगत दा तमाम फकीरी समाज, साधु समाज, संत समाज जिस सादे कपड़िया विच लिपटिया होया है, तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं, इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है, एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा, और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा, मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वाशनावां भी प्रदर्शित ना होन। अगर किसी दे कपड़िया दे राही किसी दी वाशना प्रगट हो रही है, तो उहदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है, पाप है। भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे, लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है, इते गुनाह है। इहदा पहनना ही दूजियां दी वाशनावां नू भड़का रहा है, ते भड़कियां होईयां वाशनावां किसे वक्त भी किसे दी इज्जत किसे दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वाशनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे, और इसे नू देख के गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी, इते कल युग दा भाव है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे, तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है, अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनण दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है, रत्ता पहनना मन रत्ता सुख।

0: पथ सों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें ले जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नू जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वायु प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है उह शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बाहर मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां दे भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नूं नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नूं भड़काण दा मसला खड़ा होवे साहिब कहिंदे नहीं ए वी खुआरियां नूं जन्म देंदा है। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उना दियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप देच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिड़े जिड़े देश जितने अमीर ने, जिड़े जिड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहने ने कि वडे वडे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहने ने दुनिया दे तमाम वड्डे मनुखां ते निगाह मारनी। वड्डे मनुख कौन जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है, को ना वड़ा माया वड्याई। गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है कर दी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहने ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनु एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन दिच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन दिच भुलना ने। इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे च ले जांदियां, धरातल दे जहर ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है। बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंता तुरने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंता तुरने, और जितने ज्यादा चिंता तुरने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिदे। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होवन, आखिर राजघरानियां दे फरजंद सन, इन्हां ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश दे राजघरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है। स्वभावक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करदा है, निर्धन धनवान दी रीस करदा है। तो जो थोड़े जिहा भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राजघरानिया दे ये जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजियां दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर दे देवी, घर घर दे देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं। ए ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे च धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिदी है, सुकून चाहिदा है, शांति चाहिदी है, प्रभु चाहिदा है, आत्म प्रकाश चाहिदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है। जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ए रुकदा नहीं, ए लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है। रंग पुराने हो जांदे ने, रूप पुराने हो जांदे ने, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे आं संपन्न घर जो है देशां दे च, कोई वध तों वध 2 साल ही मकान दे च रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है, नौबत इत्थे तक आ गई परिवार बदलने ने। पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे? ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नु छणकणा देके वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहे है, उते मां लई रो रहे है। वक्ती तौर ते ए छणकणा देके बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है। हथ मां दी तरफ पसारने ने, दूध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानिया दे लोग इन्हां छणकणियां नु सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिए, मसनोई नहीं, दायमी आनंद चाहिए, अस्थाई आनंद चाहिए, अस्थाई खेड़ा चाहिए। तो वो जड़ा अस्थाई खेड़ा है, वो तो जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकता है। और वो तो केवल परमात्मा है, वो तो केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकता है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर विकसित होए सन, सतगुरुदेव जी महाराज उसका जिक्र करते ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने की काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी। नेजेबाजी ए खेडां इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी, उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े की प्राप्ति हो गई है। और ऐसा घोड़ा जिदे ते जतसत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गए। अगर यही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के ले जांदे ने, और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इह ते घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी, मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कबर है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहने घर ते आवाजां पे मारदा है, ऐ तन कबर आवाजां पे मारदा है, कबर तैनू बुला रही है, गोर निमाणी सड करे, गोर कबर नू कहंदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी लोग कई दफा धर्म दे मार्ग भी बदलते रहिंदे ने, रस्ते बदलते रहिंदे ने। इस नू एक उर्दू दा महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। वो कहिंदा है, सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے، راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے اور رستے ہی کوئی منک بدل دا رہا ہے تو زندگی رستیاں چی ختم ہو جاندی ہے، منزل تک پہنچنا اوکھا ہو جاندا ہے۔ یہ چھوٹی جی زندگی کوئی ایک رستہ چن لینا چاہیدا ہے اور بڑے پرمانک رستے جگت وچ بنے شاہرا۔ ساڈے دیش دے چار وڈیاں شاہراہ بنیاں، بودھ دھرم، جین دھرم، سناتن مت، گرو مت، سکھ مت۔ اس طرح اس دیش تو باہر بھی چار وڈے شاہراہ بنے، شاہی رستے، سرکاری رستے، بہت وڈے مہان اور خوبصورت رستے، اسلام، عیسائیت، یہودی، پارسی۔ پر کئی دفعہ منکھ دی اپنی عادت ہوندی ہے ونگے ٹیڑے رستے تے چلنا، کدی کدی شاہراہ تے چلن والے اکتا جاندے نے منزل نو دور سمجھ کے، تو ونگا ٹیڑا چلن لگ پیندے نے اور ونگا ٹیڑا چل کے بھٹک جاندے نے، پر قدماں دے نشان تے بن جاندے نے انہاں دے، انہاں دے قدماں دے نشانہ دے اتے دنیا ہور چلن لگ پیندی ہے اور اس طرح ونگے ٹیڑے رستے بن جاندے نے، وہ پہنچ دے کدرے بھی نہیں، صحرا دے چی بھٹکا کے رکھ دیندے نے۔ اس طرح دے مارگ اسلام دے چ بنے، اس طرح دے مارگ یہودیاں تے عیسائیاں دے چ بنے، اس طرح دے مارگ ہندو مت، سناتن مت، جین مت، بودھ مت تے سکھ مت دے چ بنے، نکلے چھوٹے چھوٹے رستے۔ پر اے کسے دی بے ڈنگی چال نے شاہرا نو چھڈیا اور ایک پاسے بھٹکیا، او دے قدماں دے نشان، بھٹکن دے نشان زمین تے رہ گئے اور انہی نشانیاں نو کئیاں نے مارگ سمجھ کے چلنا شروع کیتا تو بھٹکے ہوئے رستیاں دے تھے چلن والے بھٹک گئے۔ شاہرا اج وی اسی دیکھدے ہاں انہاں تے کوئی بہت بھیڑ نہیں ہے، بقول بھگت کبیر، جہ مارگ پنڈت گئے پاچھے پری بہیر، اک اوگھٹ گھاٹی رام کی تیں چڑھ رہو کبیر۔ جس رستے تے چتر چلاک منک چل پے بڑی بھیڑ چل پئی، ترک ایک بندہ ترک کرن والا، جیسے رستے چ اوگھٹ گھاٹی آئی پہاڑ آیا انہیں کنارہ کشی کی تھی اور کنارہ کشی کردیاں ہی بھٹک گیا، اور اے پہاڑ جنہاں نے عبور نہیں کرنا سی انہاں نوں یہ بھٹکن چنگی لگی تو اس دے پیچھے چلن والے بھی بھٹکے، اور اس طرح دے بھٹکن والے دے کر کے چلن کر کے رستے بنے۔ یہ بھٹکے ہوئے رستے قریباً قریباً ساری دنیا دے جو ہے موجود نے، جنہاں دے تے چل کے منک پربھو تک تے نہیں پہنچتا، بھگوان تک تے نہیں پہنچتا، پر ہاں رستیاں دے چ بھٹک کے رہ جاندا ہے اور اے صاف دکھائی دیندا ہے۔ اس واسطے ایک عالم نو کہنا پیا، منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے، راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی۔ جتھے راستہ کٹھن دکھائی دے وے منک اتھے راستہ بدلن دی جو ہے کوشش کردا ہے، تے پربھو دا مارگ میدانی رستہ نہیں ہے، پہاڑی رستہ ہے۔ اک اوگھٹ گھاٹی رام کی تہ چڑھ رہے ہو کبیر، اسے نو رویداس کہندے نے، گھٹ او گھٹ ڈونگر گھنا، اک نرگن بیل ہمار، رمیے سے اک بینتی میری پونجی راکھ موڑار۔ او گھٹ گھاٹ اس نو کہندے نے جس دے تے چڑھنا بہت کٹھن ہوئے، جس تو لنگنا بہت کٹھن ہوئے اور چڑھائیاں تے دم پھل جائے۔ اس طرح دا ہی پری پورن پرماتما دا مارگ ہے، کیونکہ سرت نو بلندیاں تے لے جانا ہے، اونچائیاں تے لے جانا ہے۔ انہاں اونچائیاں تو جو بھی گھبراندے نے رستہ بدل دے نے، اور پہلی دفعہ جو رستہ بدلدا ہے او بھٹکے والا انسان او دے قدماں دے نشان پکے رستے بنا دیندے نے، اور اس ایک دے بھٹکن کر کے بڑی دنیا بھٹکدی ہے، اور اس طرح دی بھٹکن قریباً قریباً سارے جگت دے جو ہے موجود ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، یہی میری گھوڑے دی اسواری ہے، یہی سونے دی کاٹھی ہے، ہے پربھو جڑا میں تیرے رستے نو جان لیا، تیرے مارگ نو جان لیا، گھوڑے پاکھر سوئنے ساکھت بوجھن تیری واڑ، میں جان لیا تیرا رستہ کی ہے، اس دا رستہ کی ہے، جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، تیرا نام جپنا ہی तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार, नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहते ने साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है, और कुछ भी नहीं। और यही एक मार्ग है, यही सही मार्ग है, बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है, उदे नाम नु जपना, और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने दा यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे वाट नु समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़ियां दी असवारी है। घोड़े पाखर सोए ने साखत, बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है, यही साडे कोल भत्था है, उस दे तीर ने, यही साडे कोल कमान है, और यही तेग बंद जिस दे तलवार रखी दी है, उन्हों कहने तेग बंद गात्रा, यही साडे कोल ओ गात्रा है, और यही साडे कोल तलवार है, केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने। ये जो ज्ञान आ गया है, ये जो शील आ गया है, ये जो संयम आ गया है, ये जो प्रेम आ गया है, ये जो समदृष्टि आ गई है, ये जो हृदय निर्वैर हो गया है, निर्भय हो गया है, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषों को कुछ न कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नू देखिए, श्री राम दे कोल धनुषबाण सी, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसी तारकिक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता, तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष, थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहण लगे, है वेखो, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण छारी, इस आगे टिके ना को विकारी, गुरु पूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनम्रता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए। सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, सानू ते कदमां विच बैठण दा शौक है, सानू ते चरणा दे थल्ले बैठण दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है। चोटी दे राजनीतिक दी इह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है। राजनीति सिर ते बैठना है, धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है। तो महाराज कहंदे ने, इह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने, इह साडे कोल शस्त्र ने। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, विनम्रता साडे कोल गदा है, सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए इह साडे कोल खंडा है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पत स्यों प्रगट, करम तेरा मेरी जात। साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है, तेरी बख्शिश। इह जो तेरी रहमत हो गई है, इह जो तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश ही साडी जात है, तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है, तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार, होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन। साहिब कहंदे ने, हे सियाणे मनुख, सब खुआरियां नू जन्म देंदे ने, सब दुख संताप नू जो है जन्म देंदे ने, मन विकारी हो जांदा है, तन रोगी हो जांदा है। ऐसे मनोरंजना नू एक पासे करना है, ऐसियां असवारियां नू एक पासे करना है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार।
1: घर मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बहुत अपारे, नानक सच्चा पात साओ, पूछ न सकरे बिचारे बाबा होर सोना खुशी खुआरे जित

अधूरे पुरुष बैठे है वो पिता ही है, और पुरुष के अंदर जो अधूरी स्त्री बैठी है वो मां ही है। इंज कह लो जीवन भर पुरुष मां दी तलाश करता है, जीवन भर स्त्री पिता दी तलाश करती है, और उसनु अपने पति रिच पिता दी झलक ना मिले, अपनी पत्नी रिच मां दी झलक ना मिले, यकीन जानो तृप्ति नहीं आती। सारी जिंदगी अधूरापन रहेगा, खटकदा रहेगा, बोझ रहेगा। और वाकई स्त्री दिच किधरे मां दी झलक मिल गई, मां दे स्वभाव दी झलक, मां दी ममता दी झलक, मां दी शफकत दी झलक, मां दी हमदर्दी दी झलक, मां दे प्यार दी झलक, मां दी कुर्बानी दी झलक जे किधरे पत्नी दे च मिल गई तो समझ लो पुरुष संपूर्ण हो गया, मुकम्मल हो गया। और इस तरह स्त्री नूं जे किधरे पति दे चो अपने पिता दे प्यार दी झलक मिल गई, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि बच्ची ए बाल कन्या पिता दी तरफ लपकदी है, ए बाहां पसारदी है, इसदा मान तान पिता है, ए परिक्रमा प्यो दे आले दुआले करदी है, और प्यो दा प्यार भी अक्सर इसलिए छलकदा है, इसलिए जो है उमड़दा है। पति दे चों ए प्यार ना मिलिया, पिता दे प्यार दी झलक ना मिली, पिता दे प्यार दी शफकत ना मिली, पिता दे प्यार दा हुलारा ना मिलिया, ए स्त्री भी अतृप्त रहेगी। इस रिश्ते च ओनू कोई सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी सुकून नहीं मिलेगा, रूहानी तस्कीन नहीं मिलेगी। और इस तरह दे रिश्ते है जो इंज कह लो पति नूं पत्नी दे चों मां दी झलक नहीं मिली, और पत्नी नूं पति दे चों कोई पिता दी शफकत ते पिता दी तस्वीर सामने नहीं जो है प्रगट हुई। ये रिश्तियां च अंदरूनी तौर ते दरार बनी रहिंदी है, और कई दफा हालात ऐसे हो जांदे ने बैरूनी तौर ते भी दरार प्रगट हो जांदी है, नौबत तलाक तक पहुंचती है, रिश्ते जो है टूटते ने। वास्तविक ये रिश्ता जो दा रिश्ता है अंदरूनी रिश्ता है, और परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग का जो है बना रखे। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां महान रिश्तियां दा जिक्र बड़े सोहने आलमाना ढंग नाल उजागर करदे ने। घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हे परिपूर्ण परमात्मा, मेरा बड़ा सुंदर घर भी है, बड़ी सुंदर महल माड़ी भी है, और उस घर दे च उस महल माड़िया दे अंदर मेरा बहुत सुंदर एक परिवार भी है। मैं फिर अर्ज करा, मनुख नु सिर्फ खाना ही नहीं चाहिदा, सिर्फ पीना ही नहीं, सिर्फ पहनना ही नहीं, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनुख नु घर भी चाहिदा। और सिर्फ घर नहीं परिवार भी चाहिदा, अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं। घर देच ओ भी चाहिदी है जिसनु कहा जाए घर वाली, घर देच ओ भी चाहिदा है जिसनु कहा जा सके घर वाला। घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर का दा घर की है। कोई इट्टां दी ढेरी नू घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नू घर थोड़ी कहंदे ने, नहीं। घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल, घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा, ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनियां निगाहां सुट दितियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थल्ले आ गया, ए मैनू सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है। हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखां मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहंदे ने हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। ऐही मेरा हुक्म करना है, केड़ा जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है, जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो
ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ

रावण कौन साथ दे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले दार्शनिक फिलोसफर चिंतक कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखिया दुष्ट है शैतान है, पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया। इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है। अगर सीता नूं चुक के लियाण वाला शैतान है तो नक कट्टण वाला कौन है। और वह भी किसी स्त्री की अबला दी, और वह भी कोई बहुत वड्डा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का, उते वरमाला पहनाण लगी उसकी नक कट ली। ये तो बहुत वड्डा द्रोह है, ये तो बहुत वड्डा जुलम है। पर नहीं आखांगे जालम क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वह भगवान हो जाता है, जो हार जाए वह शैतान हो जाता है। एक सही है, जिहड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कुल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने, पर यह भी नास्तिक नहीं है। शिवजी का उपासक है, चारे वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। दो स्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, राम कहिंदे ने ए लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया है। असी जिस इंसान नूं जमीन ते गिराया है ये मामूली पद्धर दा नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन, इस तों पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया, राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उथे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तों उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वह जिथे शांतमई सन बिल्कुल क्रोधी सुभा, वह जिथे दूरदृष्ट सन इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी। यह भी मैं अर्ज कर दिया, सिर दे भार खड़े हो गए ते कहन लगे ब्राह्मण देवता सुनया तुहाडे कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, कोई कीमती गल साडी झोली च भी पाओ जो साडी जिंदगी च कम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़प दे रावण ने, और इंज मुस्कुराया है जिवें किसे बच्चे ते किसे नादान ते। अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी विचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोलिया। लक्ष्मण वापस आ गया, कहिंदा भगवान उते बोलदा ही नहीं, ते जद बोलदा ही नहीं उहदे कोल की ज्ञान लईए। राम कहिंदे ने पुरखा तेरे कोल वो वसफ नहीं है ज्ञान लैण दा, जिस दे कोल ज्ञान लईदा है उहदे सिर दे भार नहीं खड़े होईदा। जा उसके कदमां विच खड़ा हो ते हथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर। हुण जिस दे कदमां विच राम अपने भरा नूं खड़ा करना चाहते ने, यकीन जाणो मनुख कोई मामूली पद्धर दा नहीं हो सकता, बड़ा कीमती मनुख, वकत दा कीमती इंसान है। कदमां विच खड़ा होया लक्ष्मण, और कहिंदा है हथ जोड़ के ए ब्राह्मण देवता, जो जिंदगी दा कीमती अनुभव है इस आखिरी समय साडी झोली च पाओ। रावण दे नेत्र खुले ने, बोलिया ए लक्ष्मण हुण तैनू लैण दी ढंग आया है, हुण तैनू प्राप्त करन दा ढंग आया है। सुन, मनुख दी जिंदगी दे च कल कतई नहीं आउंदा, जो जरूरी काम होवे उसनू हमेशा ही अज कर लेना चाहिदा, मुलतवी नहीं करना चाहिदा, कल ते नहीं सुटना चाहिदा, पोस्टपोन नहीं करना चाहिदा, उनू मुलतवी नहीं करना चाहिदा, अज ही करना चाहिदा। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग, जो किसे जरूरी काम नू कल ते सुट रहा है वह जरूरी काम हो ही नहीं सकेगा, रह जाएगा। मनुख बहुत कुछ जरूरी कल ते सुटदा पे, इस तों ही पता चलता है कि बंदा खुद गैर जरूरी हो गया, कुछ भी नहीं है। यह अमृत छकण नू कल ते सुटदा है, यह शराब पीण अज ही पीनी है, हुण ही पीनी है। यह सच बोलण नू कल ते सुटदा है, झूठ बोलना है अज ही बोलना।

다른 걸 원칭지 말아 하이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र का जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उस कुल समय, ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नू इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे, लोकी उसनू वड्याण नहीं लगे बल्कि हसनगे उसते, भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इन्ह पंज ककारा नाल, कक्का के